FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं।

छह बजने वाले हैं। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से

जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपये मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल

0: के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। हार केवल तब होती है जब कोशिश करना हम छोड़ देते हैं। गिरकर फिर उठना ही असली जीत की शुरुआत है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर।
1: ये कार्यक्रम वंदनवार की भक्ति रचनाएं थी। लीजिए अब सुनिए देशगान।

0: 24 सितंबर को गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे है। इस मौके पर ये संदेश।
1: मैं प्रोफेसर उषा दत्ता पीजीआई के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट से, इसके उपलक्ष में हम आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रूम नंबर 25 एफ ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर नेहरू हॉस्पिटल में आप आएंगे तो हमारा अल्ट्रासाउंड वाले टीम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपको बता सकते हैं कि आपके पित्त की थैली का हेल्थ अच्छा है या नहीं है, उसमें पत्थर है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल खाली पेट आना है। मैं दोबारा बताती हूँ, एफ ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 25 नेहरू हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में आना है बिल्कुल खाली पेट।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हो चुके हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

लेखा जोखा उन कार्यक्रमों का जो दिन भर आकाशवाणी चंडीगढ़ से आपके लिए पेश किए जाएंगे। सबसे पहले समाचारों की बात करें, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर सफर सुरीला सा प्रोग्राम आप सुनेंगे, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं और गीतों का ये कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। आपके करियर से जुड़ी हुई जानकारी इस प्रोग्राम में दी जाती है। आज कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देंगे विद द म्यूजिकल नंबर्स। फरमाइश आपके कार्यक्रम में आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत पेश किए जाएंगे दिन में 11:30 पर। 12 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाते हैं। 1:05 6:10 2:15 5:00 6:00 8:45 समाचार संध्या, और 11:00 समाचार हम अपने

दूसरे केंद्र से रिले करते हैं। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और 5:30 स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार दर्शन आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं शाम 7:45 पर। मुख्य प्रादेशिक समाचार और उसके बाद कुछ पंजाबी गाने रात 10:30 पर। मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सुनेंगे सुरसांझ प्रोग्राम में कुछ पंजाबी गीत। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आकाशवाणी चंडीगढ़ से दिन भर आपके लिए पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर में श्री रामचरितमानस 6:45 पर संगीत सरिता, 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 प्रोग्राम हम है राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर प्रोग्राम चित्रलोक। ये था झरोखा आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंकाकांड में 321 भाग।

नल, नील, द्विध, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा राम लक्ष्मण को खोजता ललकारता रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आन उतरा है। उसके वाणों से वानर सेना की टुकड़ियां कट कट कर गिरने लगी हैं। मेघनाद का उद्घोष है कि आज वो भाई से द्रोह करने वाले विभीषण का वध अवश्य करेगा। क्रोध में कांपता धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच वो कठिन से कठिनतम वाण छोड़ने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे पंखों वाले सर्पों का समूह उड़ता चला जा रहा हो। मेघनाद के प्रहार से त्रस्त वानर और रीच जहां तहां भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य अनुपस्थित होता है जैसे युद्ध भूमि में एक भी वानर या रीच जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर मेघनाद का सिंह गर्जन सुनाई देने लगता है। ये देख हनुमान ने एक पर्वत खंड उठाकर मेघनाद पर दे मारा। पर्वत को अपनी ओर आता देख मेघनाद उछलकर आकाश में उड़ जाता है और हनुमान के बार बार ललकारने पर भी नीचे नहीं आता। वो श्री राम के ऊपर तरह तरह के अस्त्रों के साथ गालियों की बौछार करने लगता है। श्री राम उसके अस्त्रों को बड़ी सहजता से काट कर गिरा देते हैं। मेघनाद लज्जित होता है किंतु फिर माया रचाकर आसमान से अंगारों की वर्षा करने लगता है। साथ ही रक्त, पीप, हड्डियां तथा अन्य दुर्गंधमय पदार्थ बरसने लगते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा अंधकार छा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता। वानरों को भयभीत देख श्री राम एक ही वाण से इस माया दृश्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का भाग 321वां।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में आजकल आप प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुन रहे हैं, ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी नवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। तराना एक रहस्य विद्या है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मंत्र की बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है। तराने पर यह मेरी अपनी ही खोज है। तराना हमारी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी प्राचीन गायकी है जिसमें रहस्यमय प्राच्य विद्याओं का सार छिपा हुआ है। जिस समय धर्म पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, मंत्रोच्चारण सुनकर दुष्ट लोग साधना को भंग कर देते थे, उस समय सुनने में तो अर्थहीन स्तोभाक्षरों के माध्यम से नाद ब्रह्म द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की जाती थी। यह सांकेतिक भाषा है। तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, भक्ति शास्त्र, छंद शास्त्र, वेद वेदांत का सार तराने में छिपा हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व प्रणव ओंकार का प्रयोग करते हैं। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, यह ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जिसमें अ उ म के साथ साथ तीनों व्याहृतियों की व्यापकता विशाल दृष्टिकोण की द्योतक हैं। वह ओंकार कितनी बड़ी विशालता देने वाला है, अर्थात ओदानी है। इसी प्रकार हे परमात्मन तू दानी है, यानी तो दानी है। यदि स्वर के द्वारा ईश्वर की उपासना प्रभु की प्रसन्नता में हेतु बनती है तो स्वर ही ईश्वर की स्नेह साधना का सेतु बन जाता है। तदीम का मतलब है उस समृद्धि को देने वाला। ईम बीज

जो क्लीम में काम बीज के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सभी में ईम काम बीज लगा है, यह तो प्राण बीज है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर मृत कहलाएगा। शिव में से ई निकाल दिया जाए तो शिव का शव हो जाएगा। दीम द याने देने वाला, उसमें ईम लगा है तो दीम बना है, यानी प्रत्येक कामना के अनुसार फल देने वाला यह काम बीज है। दिर दिर अर्थात दिव्यता को देने वाला परमात्मा, दी अर्थात दिव्यता, र जो है दिर का, वो र अग्नि बीज है अर्थात राति ददाति, दिव्यता का दान देने वाला। दानी दानी का अर्थ है तू दाता है, तू कृपालु है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु। इसके अनुसार दिर्दिर तदेरे का मतलब है स्वर से ईश्वर के साथ सखा भाव से क्रीड़ा करना अर्थात लीला करना, उसके साथ रहना अथवा कांत भाव स्थापित करना। यलम में य का मतलब है गति, लम अर्थात जीवन में गति देने वाला, गति लाने वाला यलम है। गति देने वाली शक्ति का संचार यलली में ई काम बीज से होता है। यललोम, लोम जड़ता को कहते हैं, उसे निष्कासित करना अर्थात जाड्य यानी जड़ता को दूर करना है। द्री द्रेम आदर सूचक है, यह शुक्र मंत्र भी है। इसका विवरण वेदोक्त सबीज नवग्रह स्तोत्र व भाष्य में उपलब्ध होता है। दरतन का तात्पर्य तनु यानी शरीर, तन शरीर रूपी हृदय की गुफा को दर यानी दरा संस्कृत में कहा जाता है, जिसमें परमात्मा का वास हो, हृदय गुहा का अंधकार दूर हो और उस प्रियतम का सदा मिलन बना रहे। यह एक प्रामाणिक खोज मैंने की है, तो आइए सुनिए मेरी संस्कृत में तराने की रचना, प्रस्तुत है राग भैरव में।

0: तराने में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तराना केवल तरन्नुम नहीं है, तरन्नुम का अर्थ तो है केवल गुनगुनाना, और तराने का मतलब है पूरा गाना, जिसमें एक ऐसे इम्प्लिकेशंस छिपे हुए हैं, ऐसे संकेत छिपे हुए हैं कि अगर हम वेद शास्त्र और हमारी संस्कृति की धरोहर से हम खोजें तो पता लगता है। यह गायकी अपने आप में बड़ा अहम रखती है और बहुत सी विशेषताएं लिए हुए हैं, किंतु हम अपनी समझ से नहीं, शास्त्रों की समझ से इसे समझें तो पता लगेगा कि तराना अर्थ ही नहीं है, वह सार्थक है जिसमें बड़ी गहराई, रानाई और गंभीरता छिपी हुई है। तो मैं तराने के रहस्य को इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष बातें कहूँगा जो अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे। नमस्कार।
1: ख्याल और तराने की विशेषताएं, इस विषय पर श्रृंखला का नवा भाग अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगति की थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांग

0: 24 सितंबर को गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे है। इस मौके पर ये संदेश।
1: मैं प्रोफेसर उषा दत्ता PGI के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट से, इसके उपलक्ष्य में हम आपका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रूम नंबर 25 F ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर नेहरू हॉस्पिटल में आप आएंगे तो हमारा अल्ट्रासाउंड वाले टीम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और आप

0: आपको बता सकते हैं कि आपके पित्त की थैली का हेल्थ अच्छा है या नहीं है, उसमें पत्थर है या नहीं है। तो इस चीज के लिए आपको बिल्कुल खाली पेट आना है। मैं दोबारा बताती हूँ, एफ ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर रूम नंबर 25 नेहरू हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में आना है बिल्कुल खाली पेट।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
4: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
3: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
5: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
3: 26 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
6: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
7: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
6: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
8: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 खून बढ़ जाता है।
6: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
9: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं रोशन के संगीत से सजा। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा है, मोहम्मद रफी ने गाया और फिल्म का नाम है बाबर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तिकड़म बाज। इस फिल्म से शमशाद बेगम ने इसे गाया है, बी एन बाली ने लिखा है, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्न।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, मजू सुल्तानपुरी के बोल थे, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। लिखा इसे भी मजू सुल्तानपुरी ने है और संगीत पर किया है आर.टी. बर्मन ने।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जाने मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत अदालत फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना की है गुलशन बावरा ने, संगीत पर किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इस वक्त कार्यक्रम हम है राही प्यार की, और इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं आनंद आश्रम फिल्म से, यशुदास और प्रीति सागर की आवाजों में। इंदीवर के बोल हैं, धुन बनाइए श्यामलाल मित्रा।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
4: पेंटर बाबू
3: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
5: दिल तो पागल है,
3: दुश्मन
6: चिट्ठी न कोई संदेह,
3: गदर एक प्रेम कथा,
7: मैं निकला ओ गट लेके,
3: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
8: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
3: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 सिर्फ विविध भारती पर।
9: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में पहली फिल्म का गीत सुनिए, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा

0: चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गांव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गांव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
1: हमारे गाँव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी, जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गाँव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।

0: टैंक को बनाए, जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
4: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे

0: अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपये मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

दोस्तों नमस्ते। आज त्रिवेणी में हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कला होती है, जो जितना अधिक कार्य कर लेना चाहता है और जो जितना अधिक पढ़ता है उसमें उतनी अधिक जिज्ञासा होती है। उसे यदि सही समय पर प्रश्नों के उत्तर मिल जाए या उसे क्या करना है इनका व्यावहारिक ज्ञान मिल जाए या ढूंढ लें, तो वो अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है, संवार सकता है अपने सपनों को।

अक्सर हमारे दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न चलते रहते हैं। हमारे इतने सारे विचारों में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इनमें अनगिनत विचारों के बीच हमें अपने उन विचारों को चुनना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी निर्भर होगी। वो विचार हैं अपने लक्ष्य का विचार, जो भी हमारा लक्ष्य है उसका विचार, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

हम अपने लक्ष्य के साथ जीना शुरू करें। हमारा लक्ष्य सोने, खाने, उठने, बैठने में शामिल हो और उस लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को ढालना शुरू करें, और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को अपने अंदर समाहित करें।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा।

0: दीपावली प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड शूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
2: पहला,

0: कवर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। नए गानों का ये खूबसूरत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। अब सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आइए इस कार्यक्रम में नई धुनों के साथ, नए गीतों के साथ और ढेर सारी ताजगी के साथ शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दे दे प्यार दे टू फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया आदित्य रिखारी और पायल देव की आवाज़ों में। इसे लिखा था कुमार ने और म्यूजिक कंपोजर थे पायल देव और आदित्य देव।

0: कुमार जगदीप और जोश बरार ने इस गीत को लिखा था। सलामत अली मतोई, जोश बरार और आगाज ने संगीतबद्ध किया था।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
5: पेंटर बाबू
4: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
6: दिल तो पागल है,
4: दुश्मन
7: चिट्ठी न कोई संदेह,
4: गदर एक प्रेम कथा,
8: मैं निकला ओ गट लेके,
4: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की।
9: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
4: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। माफ कीजिएगा, जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में मनोज मुंतशिर का लिखा गीत है। रोकी शिव ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म का नाम है मां।

0: कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक ब्रेक का।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टा टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, एक जरूरी सूचना आपको बता देते हैं कि आज है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी विश्व समुद्री दिवस। समुद्र और समुद्री परिवहन के महत्व को समझने और सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ समुद्री व्यवस्था के प्रति जागरूक होने का दिन। इस दिन हमें सिर्फ समुद्र की सफाई की बात नहीं करनी, बल्कि समुद्र में रहने वाले अनगिनत जीवों के जीवन के बारे में भी सोचना है। समुद्र को साफ रखना यानी उनके जीवन को सुरक्षित रखना। दरअसल प्रकृति का पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो होता है। हम पशु पक्षी, समुद्र, पानी और हवा सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसीलिए किसी एक हिस्से में बढ़ता प्रदूषण आखिरकार हम सभी के लिए संकट बन सकता है। तो आइए आज एक छोटी सी पहल करें, प्लास्टिक और कचरा जल स्रोतों में हम ना डालें, समुद्र और प्रकृति को स्वच्छ रखें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये दिवस हर साल मनाया जाता है सितंबर के आखिरी गुरुवार को। निशांची फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं, अरिजीत सिंह ने इसे गाया है।

0: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मैरी टाइम डे के बारे में, जो कि एक सूचना नहीं, एक जानकारी है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और ये दिन मनाए जाने का महत्व क्या होता है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री उद्योग के इसी बेजोड़ योगदान का सम्मान देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण, समुद्र के जरिए होने वाले प्रदूषण को रोकने, जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री जीवों का व पर्यावरण की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना इसका अहम उद्देश्य होता है। नाविकों का सम्मान भी इसी में आता है कि समुद्र में महीनों तक मुश्किल हालातों में काम करने वाले नाविकों और बंदरगाह कर्मियों के कल्याण और अधिकारों को भी रेखांकित करता है ये दिन। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा की गई थी। पहली बार यह दिवस 17 मार्च 1978 को IMO कन्वेंशन के लागू होने की याद में मनाया गया था।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक,
2: ओ

0: उनके
1: एड्स एचआईवी ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: बॉबी ऋषि की लव स्टोरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शान और आकृति कक्कर की आवाजों में। कुणाल कोहली ने इस गीत की रचना की थी, संगीतबद्ध किया था शान ने।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
1: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
1: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं,
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: अरोड़ा प्लाईवुड,
5: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
4: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लवयापा इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची ने संगीत पर किया।

चिड़िया इस फिल्म का गीत दिव्य कुमार की आवाज में। मेहरान अमरोही ने इस गीत को लिखा है और शैलेंद्र बर्वे ने संगीतबद्ध किया है।

परम सुंदरी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। सचिन जिगर ने इसे संगीतबद्ध किया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य गायक कलाकार।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चिचलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरमान खान का गाया स्नेहा शंकर के साथ में ये गीत। कौशल किशोर ने इसे लिखा है, विशाल मिश्रा ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम हक।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: रेट्रो फिल्म का गीत हृदय गट्टानी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रकीब आलम ने इसे लिखा था और संतोष नारायणन ने धुन बनाई थी। और ये गीत था कार्यक्रम चित्रलोक का, लोक की आखिरी प्रस्तुति।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रोग्राम है आज का अखबार कुछ ही पलों में।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका, जोड़ी पकी इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम,

0: थार, छह बाइक, 12 स्कूटी, अते 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप, प्लस 1 किलो चेस, यानी एक लकी ड्रॉ कूपन, 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो, TNC अप्लाई।
1: आज का अखबार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और अब से लेकर 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज, आपका हम सफर बनकर। आज की अखबारों में जो जो खबरें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जितनी संभव हो सकती है इस प्रोग्राम में, आधे घंटे के प्रोग्राम में। तो आज सबसे पहले भाई एशियाई जो खेल हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, आपको ले चलेंगे जापान के नागोया में, जहाँ भारत को 28 साल बाद पदक मिला है और वो भी मिला है भारोत्तोलन में। जापान के आइची प्रांत के नागोया शहर में चल रहे एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने पदकों का पंजा जड़ा है। आज की अखबार ये लिखती है, पंजा जड़ा है। मीराबाई चानू की बात करें तो भाई मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, तो वहीं शूटिंग में स्कीट टीम ने 2 कांस्य पर कब्जा जमाया। इसके अलावा जय मीना ने सॉफ्ट टेनिस और बैडमिंटन में पुरुष टीम ने भी कांस्य पदक जीता। ये तो हाईलाइट है एशियाई खेलों की। अब 49 किलो भार वर्ग में मीरा बाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू ने 28 साल बाद ये एक पदक अपने देश के नाम किया है, भारत के नाम किया है। 28 वर्ष पूर्व बैंकॉक में एशियन गेम्स में हमने रजत पदक जीता था और ये जीतने वाले हमारे खिलाड़ी थे कर्णम मलेश्वरी, लेकिन मीराबाई चानू ने एक बार फिर से उसे ट्रैक पर लाया है और 49 किलो भार वर्ग में जो है स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 198 किलो भार उठाकर रजत पदक हासिल किया है। तो मीराबाई चानू को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और अपने देश का परचम लहराया, ये बहुत अच्छा लगा, हर भारतवासी को गर्व है आप पर। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं, पंजाब का भी इसमें योगदान है। राइजा ढिल्लों और महेश्वरी चौहान के साथ मिलकर पंजाब की परिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी की स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ी भावुक हो जाता है, खुशी से उनके आंसू जो हैं वो छलक पड़े। वहीं पंजाब के भवतेग गिल ने बेहतर शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक जीत लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो जापान के आइची प्रांत में नागोया शहर में जो एशियाई गेम चल रहे हैं उनमें भारत ने अपना परचम लहराया है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि थाईलैंड के साथ महिला हॉकी में ड्रैग फिलर दीपिका सहरावत ने रिकॉर्ड 9 गोल की मदद से भारत ने एशियाई खेलों की महिला हॉकी स्पर्धा में थाईलैंड को 20-1 से हराकर पूल बी में लगातार तीसरी जीत हासिल की है हमारी महिला हॉकी टीम ने। दीपिका ने दूसरे 8वें और 9वें, 24वें, 33वें, 36वें, 39वें, 51वें और 57वें मिनट में गोल किए, 9 गोल किए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत की महिला और पुरुष कबड्डी टीम की शानदार जीत हुई है। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 48-25 से शिकस्त दी है और इसी तरह से टेबल टेनिस में भी भारत के मानुष शाह और दिया चिताले की जोड़ी टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कुल मिला के हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं एशियाई खेलों में, तो इन सब के लिए हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हम जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। जेम्स ऑफ इंडिया यानी अपने ज़िले की कहानी, अपनी ज़बानी। तो इस चैलेंज में अपनी एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, 30 सितंबर 2026 तक। और इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि माई वेव्स पर जाकर, माई वेव्स WAVES, इस पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करना है, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड करें और सबमिट कर दें। तो जेम्स ऑफ इंडिया में चैलेंज में आपको क्या कवर करना है? अपने शहर, गांव या ज़िले की किसी खास जगह को करना है, परंपरा को, प्रतिभा को या कहानी को, उसको कैमरे में कैद करना है, यानी जो आप ये समझते हैं कि ये भारतवासियों के सामने आनी चाहिए और दुनिया भर के सामने आनी चाहिए, वो आपने डिजिटली क्रिएट करना है। तो उभरते डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक ख़ास प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जेम्स ऑफ इंडिया। आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2026। तो ये तो थी बात जेम्स ऑफ इंडिया की, अपने ज़िले की कहानी, अपनी ज़बानी। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में आपको एक जानकारी दे दें। और आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सीखो और कमाओ योजना के बारे में, इसके उद्देश्य क्या हैं। सीखो और कमाओ योजना

0: बारहवीं योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी दर को कम करना है। अल्पसंख्यकों के पारंपरिक जो कौशल हैं उनका संरक्षण करना है और उनका सुधार करना है, और ये सब करते हुए उन्हें बाजार के साथ जोड़ना है। मौजूदा जो कर्मी हैं उनके कौशल को बेहतर बनाना है और उनका स्थापन करना है, यानी प्लेसमेंट को सुनिश्चित करना है, और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना है। हाशिए पर रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए आजीविका के बेहतर साधन पैदा करना है और उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना है, मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। बढ़ते हुए बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना है, और सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए एक सशक्त मानव संसाधन तैयार करना है। तो ये है उद्देश्य सीखो और कमाओ योजना के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, विकास के लिए जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम है सीखो और कमाओ योजना। अब इसके बाद यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के उस पार आपके लिए रीजनल हेडलाइंस लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

रीजनल न्यूज़ लेकर मैं परवाज। इस सेगमेंट में हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरें लेकर आते हैं। पहले बात करते हैं पंजाब की। नशा मुक्त पंजाब यात्रा में भाजपा नेताओं ने आप सरकार को घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी हुए शामिल। कर्मचारियों का डीए 8% बढ़ा। सितंबर से मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ। ड्रोन के जरिए आई 20 किलो हेरोइन के साथ 4 आरोपी काबू। एक दुबई में बैठे तस्कर के इशारे पर पंजाब में चला रहे थे नेटवर्क। विदेशी तस्करों से भी जुड़े हुए थे तार। आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आज से धान की तुलाई, कल से कटेंगे गेट पास। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों की दूसरी जिले में तबादले की मिलेगी सुविधा। सितंबर अक्टूबर में लगेगा सेवा सेतु कैंप।

फॉर्म्स मीट के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। बोले, तकनीकी ऐसी हो जो खेती का खर्च घटाए व आमदनी बढ़ाए। अतिथि अध्यापकों का धरना खत्म। चंडीगढ़ में SCS में वार्ता आज। बोले, कोर्ट के फैसले के अनुसार पक्का करने से कम कुछ नहीं होंगे मंजूर। हरियाणा में MBBS की 300 सीटें बढ़ी। सभी निजी कॉलेजों को मिली। राज्य के 18 मेडिकल कॉलेजों में अब MBBS की सीटें हुई 3110। और अब चलते हैं हिमाचल की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू 6 से 8 अक्टूबर तक हिमाचल दौरे पर। बद्दी में 10 करोड़ से बनेगा राज्य स्तरीय खेल मैदान, ऐसा कहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार चौधरी ने।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से FM 107.2 MHz पर। आप हमारा ये कार्यक्रम अपने रेडियो सेट पर हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी जो ऐप है न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी ये कार्यक्रम साथ साथ जारी है।

आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दें, आज गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे है। इस मौके पर हम आपको एक विशेष बातचीत सुनवा रहे हैं सुबह 10:45 पर। डॉक्टर उषा दत्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो समय याद रखिएगा 10:45 पर। और अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इस रविवार यानी संडे को खुले रहेंगे देश भर के सभी बैंक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन बुधवार को मंत्रियों के कार्यों का लिया फीडबैक। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को मंत्र दिया, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर करें फोकस। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिली जुली खबरें हैं। हारमूज में मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला, उत्तर प्रदेश के देवरिया के सूरज की मौत। फैसलों पर चुनाव आयुक्तों में दरार के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये सब सामान्य है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने दिया जवाब, अमेरिका के आगे कभी घुटने नहीं टेकेंगे। अमेरिका ने माना भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर में ईरान समस्या का समाधान। राजस्थान के महाजन रेंज में गर्जी भारत अमेरिकी तोपें, अपाचे ने भेदे लक्ष्य ये अभ्यास प्रक्रिया में। भू राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 7.1% रहने का अनुमान जताया गया है और रक्षा उत्पादन 1.8 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 38,000 करोड़ के सार्वकालिक स्तर पर रक्षा निर्यात। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। इसके बाद बारी एक गाने की।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: एक बार फिर परवाज आपके साथ स्थानीय समाचार लेकर। नाइट कल्चर पर नकेल, चंडीगढ़ के क्लबों में 12 बजे के बाद नो एंट्री, 1 बजे क्लब पूरी तरह करना होगा बंद। घूमने में पीछे रह गए चंडीगढ़ियन, सिर्फ 27% जाते हैं सेम डे ट्रिप पर और देश भर में 58%। सारंगपुर मेडिकल कॉलेज के अन्य विभागों के निर्माण के लिए भेजी 472 करोड़ की DPR। चंडीगढ़ में हेल्पलाइन नंबर जारी, 8283040100 पर दें नशे की सूचना, तुरंत रेड होगी, पहचान रहेगी गुप्त। चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उठाए कदम। घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन विज्ञापन साइट्स की बुकिंग। नगर निगम ला रहा है नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, 464 पब्लिक साइट्स और 62 साइकिल डॉकिंग स्टेशनों के लिए पोर्टल पर सुविधा। 23 सितंबर से शुरू हुआ शरद विश्व, दिन रात की बराबरी का दिन, अब शामें होंगी लंबी। अब ये थी लोकल हेडलाइंस।

0: तो साथियों, आज के इस प्रोग्राम यानी आज का अखबार का समय लगभग समाप्ति की ओर है। अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल जरूर रखिए। कल फिर इस प्रोग्राम में आपकी और हमारी मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ, गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।
2: नमस्कार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
1: हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: घर का सपना

नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी दे दें। आज सुबह 10:45 पर हम आपको एक विशेष बातचीत सुनवा रहे हैं। ये विशेष बातचीत जिस उपलक्ष्य पर हम आपको सुनवा रहे हैं वो है कि आज है गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे। इस मौके पर इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर उषा दत्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। तो अब शुरुआत करते हैं सफर सुरीला सा प्रोग्राम के पहले गाने की। ये फिल्मी गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना है, प्रीतम के संगीत में, गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और ये फिल्म है कलंक।

का साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अभी आपने पिनाज मिसानी और तलत अजीज की आवाजों में ये रचना सुनी। गैर फिल्मी रचना थी।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम है। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। रेडियो पर आप ये कार्यक्रम हमारे कसौली ट्रांसमीटर से सुन रहे हैं।

10:20 हो चुके हैं, प्रोग्राम जारी है, अब बारी है फिल्मी गाने की। ये फिल्म है जबरिया जोड़ी, आवाजें हैं नेहा कक्कड़ और विशाल और साथियों की। गीत को लिखा है राज शेखर ने, संगीतकार विशाल मिश्रा, और ये फिल्म है जबरिया जोड़ी।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
3: सफर सुरीला सा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से। अब बारी है एक फिल्मी कव्वाली की। मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में आप ये सुनेंगे द बर्निंग ट्रेन। ये फिल्म है, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 10:45 पर हम आपको विशेष बातचीत सुनवा रहे हैं गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर। बातचीत में जानकारी देंगी डॉक्टर उषा दत्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी PGI चंडीगढ़। तो ये बातचीत सुनिए 10:45 पर। अब कव्वाली मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, फिल्म है द बर्निंग ट्रेन।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे। 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आपने कैलाश खेर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत सुना। इसी के साथ ही अब आज का सफर सुरीला सा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। नमस्कार श्रोताओं, आज ये विशेष बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस विशेष बातचीत में जो

0: विषय है वो है गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे। आज 24 सितंबर को ये दिन हमारे देश में मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे मकसद केवल इतना है कि जो हमारी पित्त की थैली है उसके बारे में हम सही से जानकारी रखें, उसमें जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में हमें जागरूक करने का ये दिन है और किस तरह से अगर कोई समस्या आती है तो हमें किस तरह से डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना है, क्या ट्रीटमेंट लाइन है, इन सब बातों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा दत्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़। तो सबसे पहले डॉक्टर उषा दत्ता, इस विशेष बातचीत में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया।
0: गॉल ब्लैडर की आप माहिर हैं तो हमें बताइए कि गॉल ब्लैडर है क्या, ये पित्त की थैली है क्या और इसका काम क्या है?
1: पित्त की थैली एक गुब्बारे की तरह रहती है जिगर के नीचे। जिगर जब पित्त बनाता है वो पित्त की थैली में जाके थोड़े देर स्टोर रहता है ताकि जब हम खाना खाएं, दिन में हम 3 या 4 बार खाना खाते हैं, उस टाइम पे पित्त की थैली पिचकती है, अपना पित्त को रिलीज करती है ताकि खाना आपका पच जाए। स्पेशली जो फैट होता है, ऑयल, फैट्स, बटर, घी, ये जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए हमें पित्त की थैली की जरूरत होती है।
0: मतलब जो फैट्स हम खाते हैं, तो दिन भर जो फैट हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये पित्त की थैली में जो पित्त होती है उसका काम है कि आके उसे पचाना।
1: बिल्कुल, क्योंकि हाँ, इंसान दिन में 3 या 4 बार खाना खाता है,
0: डॉक्टर साहब खाते ही रहता है
1: तो वो खाते ही रहना भी गलत बात है वैसे, लेकिन इंसान को आजकल खाना सारी जगह दिखती है तो इंसान खाता रहता है। तो वैसे जो आम आदमी 3 या 4 बार जब खाना खाते हैं ताकि ये जो पित्त की थैली उसमें पित्त को स्टोर करके रखती है वो उसको रिलीज करती रहती है, जब रिलीज करती है तो हमारा फैट पच जाता है।
0: जब उसको इंडिकेशन मिलती है कि नाउ इट इज योर टर्न रिलीज करने के लिए तो वो रिलीज करती है।
1: बिल्कुल।
0: क्या कितना खूबसूरत मैकेनिज्म बनाया है कुदरत ने।
1: बिल्कुल, कुदरत ने ऐसे मैकेनिज्म बना क्योंकि पहले आदमियों के पास पूरे दिन में 1 या 2 बार खाना मिलता था, तो सारा टाइम जो पित्त जिगर ने इतनी मुश्किल से बनाया वो रिलीज होता रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए स्टोर करने के लिए पित्त की थैली बनाई है कुदरत ने ताकि जब इंसान या जानवर खाना खाता है उस टाइम पे उसको रिलीज करके ये उस खाने को यूटिलाइज कर पाएगा।
0: यानी शरीर का वेयर हाउस है ये।
1: वेयर हाउस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो पित्त की थैली में पित्त तो होती है, पत्थर कहाँ से आ जाते हैं?
1: आपने सही सवाल पूछा, इसीलिए ये गॉल ब्लैडर हेल्थ डे है जिसमें हम लोगों को सतर्क करना चाहते हैं। पित्त की थैली आमतौर पे ठीक चलती रहती है लेकिन पित्त की थैली में कभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए या बैक्टीरिया ज्यादा हो जाए या बाइल एसिड कम हो जाए, ये सारी जो इंटरनल मिल्यू गड़बड़ हो जाती है तब पत्थर बन जाता है।
0: यानी जो केमिकल लोचा
1: पित्त की थैली में गड़बड़ हो जाती है तो पत्थर बन जाती है। पत्थर बन के धीरे धीरे धीरे बढ़ जाती है और ये पत्थर हमने जो रिसर्च में देखा उसके चारों ओर बैक्टीरिया जम जाती है, फिर पित्त की थैली में इन्फ्लेमेशन करती रहती है, इन्फेक्शन करती रहती है। और ये पत्थर, कभी हमने खाना बहुत भारी खाना खा लिया, काफी बार कहीं शादी ब्याह में गए, बहुत देर खाली पेट रहे, एकदम बहुत भारी खाना खा लिया, तो एकदम जब पित्त की थैली पिचकती है तो पत्थर जाके उसमें फंस जाता है। जब पित्त के रास्ते में कहीं भी पत्थर फंसता है एकदम दर्द उठती है और दर्द ऊपर के पेट में उठती है, उसके साथ साथ उल्टियां होती है, जी मचलाता है और ये जो दर्द है ये बीच के पेट से पीठ के तरफ जाती है।
0: असहनीय दर्द होती है।
1: असहनीय दर्द होती है। काफी बार मरीज आते हैं रात रात को 12 बजे इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो ऐसा कभी किसी को भी दर्द हो तो जरूर अगले दिन खाली पेट अल्ट्रासाउंड करवाना कि पित्त की थैली में पत्थर है या नहीं देखने के लिए। सिर्फ घर में अजवाइन सौंफ खा के
0: ये अल्ट्रासाउंड कहीं नजदीक आपके
1: कहीं भी करवा लीजिएगा, किसी भी सेंटर में करवा लीजिएगा। पीजीआई में आएंगे तो पीजीआई में भी हम कर सकते हैं लेकिन किसी भी सेंटर में जरूर करवा के पित्त की थैली में पत्थर है तो आप जरूर, हमारे गॉल ब्लैडर का हेल्पलाइन भी हमने बना के रखा हुआ है।
0: अच्छा।
1: उसमें कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर है,
0: नंबर बता दीजिए,
1: 8427272233।
0: यानी 8427272233।

0: सात दो सात दो दो तीन तीन ये नंबर है, आपका टोल फ्री नंबर है।
1: बिल्कुल, ऐसा कोई दर्द होगा तो अगले दिन सुबह 9 से 5 बजे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर ले, 9 से रात को 9 बजे तक भी कांटेक्ट कर
0: सकते हैं। तो आपका डिपार्टमेंट वो बताएगा कि क्या करना है,
1: क्या करना।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी आपने दी है, डॉक्टर आपके द्वार वाली बात हो गई है। तो ये जो पत्थर बन जाते हैं ये तो सालों साल पड़े रहते होंगे उसमें, कई बार आपने बताया कि दर्द होता है, कई बार दर्द नहीं होता, अचानक किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाया किसी और कारण के लिए तो उसे डॉक्टर ने कहा कारण तो ठीक है लेकिन भाई आपके पित्त में तो पत्थर ही है।
1: आपने बिल्कुल सही पकड़ा ये चीज, क्योंकि 100 में 80 लोगों को दर्द ही नहीं होती,
0: 20 अच्छा, 80 लोगों को दर्द ही नहीं होता,
1: दर्द ही नहीं होती। तो पित्त की थैली में पत्थर पड़ा है उनको भी पता नहीं है और अचानक दर्द हो गया, कभी फ्लाइट पे है कभी यहां है कभी वहां है, एकदम दर्द हो गई। तो स्पेशली विदेश गए हुए हैं उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, वहां दर्द हो गई, वहां भर्ती होना पड़ गया। तो सीधी सी बात इसमें है कि हरेक को 40 साल की उम्र से जो ऊपर है जरूर एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, खाली पेट पित्त की थैली में पत्थर है या नहीं पता होना चाहिए।
0: नहीं, कितनी देर के बाद करवाना है, साल में एक बार कि 6 महीने में एक बार?
1: कभी 40 साल
0: जिसको,
1: के बाद
0: जिसको
1: एक
0: दर्द
1: बार,
0: नहीं, जिसको दर्द
1: जिसको
0: नहीं,
1: दर्द नहीं है 40-50 साल के बाद एक बार जरूर अल्ट्रासाउंड होनी चाहिए पेट की, देखने के लिए पत्थर है या नहीं है, एक बार अल्ट्रासाउंड
0: और उसी में क्लियर हो जाए,
1: क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद 10-10 साल में करते रहे लेकिन एक बार जरूर 40-50 साल पे एक बार कर लेना चाहिए कि पित्त की थैली में पत्थर है कि नहीं। किसको रिस्क है पत्थर की ये हमें जानकारी होनी चाहिए, जिनकी वजन ज्यादा है, जिनकी काफी सारे प्रेगनेंसीज हुए हैं, लेडी के जिनके प्रेगनेंसीज हुए हैं, क्योंकि पित्त की थैली में पत्थर जम जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तीसरा है जिनके फैमिली हिस्ट्री में गॉल स्टोन है, माने मदर फादर ब्रदर सिस्टर किसी को भी पित्त की थैली में पत्थर रहे हो तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है स्टोन बनने का। तो ये सारे लोगों को जरूर अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। दूसरी बात, आजकल काफी लोग सडनली वजन कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जब सडनली बॉडी का वेट कम होता है तो पित्त की थैली में पत्थर का रिस्क बढ़ जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो वजन कभी भी जल्दी जल्दी नहीं कम करना चाहिए।
0: वजन कम करने का तो आजकल फैशन है।
1: हाँ, ये तो फैशन है, तो इसलिए हम कहते हैं महीने में आधा किलो से ज्यादा कम नहीं करना चाहिए अपना वजन।
0: बहुत अच्छी बात बताई कि आधा किलो से कम नहीं करना है।
1: बिल्कुल,
0: मतलब ग्रेजुअली कम करना है आपने।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉडी के अंदर की जो संतुलन है ना उसको एकदम हम किसी भी तरीके से बिगाड़ेंगे तो बॉडी उसको संभाल नहीं पाता है।
0: सालों साल एक ट्रैक पे बॉडी चल रही है, अचानक आप उसको झटका देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे भी पत्थर हो सकता है,
1: उससे भी पत्थर हो सकता है। तो ये सडनली लोग जिम में चले जाते हैं, सडनली वजन कम करने की कोशिश करते हैं, इनमें ज्यादा पत्थर का रिस्क हो जाता है।
0: अब ये बताइए कि लक्षण कुछ और भी होते हैं दर्द के अलावा?
1: बिल्कुल, सबसे कॉमन लक्षण जो है दर्द ही है, ऊपर के पेट में दर्द। इसके अलावा कभी कभी किसी को खाना खाने के बाद बदहजमी हो जाती है, खाना पचता नहीं है, भारी खाना नहीं पचता है, तो इनमें हम देखते हैं कि पित्त की थैली ठीक से पिचक नहीं रही है। है तो सही,
0: अच्छा।
1: ऐसा नहीं कि हो सकता उसमें थोड़े पत्थर हो, पिचक नहीं रही, पित्त की थैली का फंक्शन ठीक नहीं है, तो ऐसे वाले सिचुएशन में भी एक अल्ट्रासाउंड करा लेना बेहतर रहेगा।
0: अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है ना, अलग अलग साइजेस के होते हैं?
1: बिल्कुल,
0: तो इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है, कि छोटे छोटे वाले होते हैं या ज्यादा बड़े वाला होता है?
1: दोनों, जो बिल्कुल छोटे हैं वो कभी भी खिसक के पैनक्रियास को इरिटेट कर देते हैं, जो बड़े हैं बहुत बड़े हैं पित्त की थैली में बैठे बैठे वो वहां कैंसर कर सकते हैं। तीसरा जो बीच के साइज है वो पित्त के रस्ते में जाके फंस के पीलिया और जॉन्डिस कर सकता है।
0: हाँ।
1: तो पहले हम काफी लोग हम रिसर्च करते थे स्टोन के साइज के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अभी ये देखा गया छोटा भी गड़बड़ करता है, बड़ा भी गड़बड़ करता है, बीच का भी गड़बड़ कर सकता है, तो इसलिए ये प्रेडिक्टेबिलिटी कम होने के वजह से ही हम कहते हैं कि एक तो सारे लोग अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, पित्त की थैली में पत्थर है दर्द है तो उसकी ऑपरेशन करवा दें, पित्त की थैली में पत्थर है दर्द नहीं है तो जरूर साल में एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अल्ट्रासाउंड करवाते रहें।
0: डॉक्टर ने आपने कहा तो मरीज ने दिखा दिया, उसके बाद आपने कहा कि आपके स्टोन है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और उसकी शुरुआत क्या होती
1: है? आमतौर पर पित्त की थैली में पत्थर है और दर्द है तो डिक्टम ऑल ओवर अराउंड द ग्लोब यही है कि आप अपना ऑपरेशन

0: करवा लो। सिंपल सा ऑपरेशन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं इसको, दूरबीन से सर्जरी होती है, छोटा सा एक टाके का सर्जरी होता है, वो दूरबीन से जाके पित्त की थैली को निकाल देते हैं। ये सिंपल सा सर्जरी आधा घंटा लगता है, सुबह बढ़ते हुए शाम तक घर छुट्टी हो गई, और पित्त की थैली निकालने का कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि ये पित्त की थैली जिनमें पत्थर है आमतौर पर वो वैसे भी काम नहीं कर रही है, तो बस उसको बिठा के रखा
1: उसको
0: हुआ
1: रखने का क्या
0: रखने का क्या फायदा। तो
1: डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये निकलवाने के बाद मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, बात बात पर प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, मैं कुछ ठीक से खा पाता नहीं हूं, मुझे डर लगता है मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे गैस हो जाएगी, और उसके दिमाग में ये रहता है कि जब से मैंने पित्त की थैली निकलवाई है तब से ही समस्या आन पड़ी है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, काफी लोगों के मन में ऐसा रहता है।
1: अच्छा, मन में है,
0: सच्चाई नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पित्त की थैली निकालने के बाद 2 या 3 महीना आप परहेज करके हल्का खाना खाएं तो बॉडी वो संतुलन में एडजस्ट कर लेती है। उस टाइम पे आपने हैवी खा लिया, गड़बड़ कर दिया, तो फिर वो थोड़ा समस्या चल सकती है थोड़े देर।
1: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक रेगुलेटर था, आपने रेगुलेटर निकाल दिया और सप्लाई जो है अब लगातार आ रही है।
0: सप्लाई लगातार नहीं आती है क्योंकि पित्त के थैली का जो नीचे का रास्ता है वो टाइट एक वैल्व बना हुआ है, वो वैल्व टाइट रहती है, जब हम खाना खाते हैं वो वैल्व खुलती है और पित्त बाहर आती है, लेकिन नलका जब चाहिए बंद है जब चाहिए खोल लिया।
1: और सबसे बड़ी बात है कि मरीज की जान की कीमत सबसे ज्यादा है, गॉल ब्लैडर के बिना तो आपके मुताबिक रहा जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आपका मतलब कि एक नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: खाना पीना खाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसमें कुछ परहेज क्या रखना पड़ता है?
0: पित्त की थैली निकलने के बाद परहेज यही रखना पड़ता है, पहले 1 या 2 महीना थोड़ा सा हल्का तली हुई चीजें खाएं, सिंपल खाना खाएं, 1-2 महीना बॉडी को लगता है रीएडजस्ट करने में, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जनरली ये कहते हैं रात को हैवी खाना नहीं खाना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब हम ये पित्त की थैली का ऑपरेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उस पर किसी तरह का एडवर्स इफेक्ट आता हो हमारी एक्टिविटी में?
0: नहीं, आपका फिजिकल एक्टिविटी या सारा वैसे ही रहता है
1: जी। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन को प्रिवेंट करने का कोई तरीका हो, और किस एज में वो शुरू करना चाहिए हमें?
0: गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आमतौर पे 20-30 साल पे बनने लगती है, जिनको बनने की टेंडेंसी है, तो उस टाइम पे एक चीज का सतर्क रहना चाहिए कि बहुत खाली पेट रह के भारी खाना खा लिया, हैवी फैटी फूड खाते रहे और फास्ट फूड ज्यादा खाया, मैदे वाली चीजें ज्यादा खाई, तली हुई चीजें बाहर की खाई, तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे बॉडी की जो संतुलन है जो
1: उसको
0: खराब करती है। जब संतुलन खराब करती है पित्त की थैली में पत्थर बनती है
1: ओवर द ईयर्स,
0: और पित्त की थैली का पत्थर उस लक्षण को दोहराता है कि आपकी संतुलन गड़बड़ है। तो इसको प्रिवेंट करने का तरीका है टाइमली खाना खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना क्योंकि पूरे रात जिगर ने पित्त बनाया है, उसको स्टोर किया है, वो इंतजार कर रहा है कि आप अपना सुबह का नाश्ता खाएं तो फिर हम पित्त अपना रिलीज
1: मैं अपना काम शुरू करूं।
0: बिल्कुल, सो सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना। आजकल के जमाने में सारे लोग भागते रहते हैं सुबह सुबह, तो खाना खाए बिना भाग रहे तो, और खाना खा के एकदम भागते हैं तो बॉडी को टाइम भी नहीं मिलता वो खाने को डाइजेस्ट करने, शुरू भी नहीं कर पाते तब तक हम भागने में लग जाते हैं। तो ऐसा किसी को ऑफिस जाना है जल्दी तो पैक करके ले जाए और वहां बैठ के आराम से 5 मिनट खाना खा ले,
1: इत्मीनान से खाए।
0: पहले हमेशा हम भगवान को शुक्रिया करके इत्मीनान से खाना खाते थे, आजकल जल्दीबाजी में चलते फिरते हाथ में कोई खा रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, कोई रस्ते का खाना उठा के,
1: तो ये कहीं ये छोटे छोटे कारण कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। वो संतुलन को खराब करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जब संतुलन खराब होता है तो उसमें एक गड़बड़ी होती है, पित्त की थैली में पथरी बनती है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो डॉक्टर उषा दत्ता जी, आप इस विशेष बातचीत में आई और आपने गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे पर उसके बारे में आपने बताया, आपका पधारने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, इस विशेष बातचीत को रिकॉर्ड किया हमारे साथी प्रेम सिंह ने।
2: हमारे श्रोता सुन रही थी गॉल ब्लैडर गुड हेल्थ डे पर डॉक्टर उषा

0: दत्ता के साथ की गई ये एक विशेष बातचीत। इनके साथ बात कर रही थी अनिल पुंज। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टा टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए श्रोता, अब सुनते हैं कार्यक्रम लक्ष्य। इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी निर्माण प्रबंधन।
3: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज, आपके रेडियो सेट पर प्रोग्राम लक्ष्य में। लक्ष्य प्रोग्राम में आपके करियर से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको देते हैं। आज की ये जानकारी है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। किस तरह से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आप अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्वालिफिकेशंस कैसी होनी चाहिए और आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए। मैनेजमेंट के छात्र हमेशा से बेहतर करियर की तलाश में रहते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट उनके लिए एक हॉट ऑप्शन है। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के दौर में भारतीय इकोनॉमी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं और आने वाले दिनों में और भी आएंगे, जिसके चलते हर फील्ड में तेज गति से विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो खासा ही हो रहा है और इसी के चलते हुए कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो मांग है वो डबल हो गई है। और यदि आप में से भी कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है तो तैयारी कर लीजिए। आज इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताते जाएंगे और साथ में प्ले करते जाएंगे म्यूजिकल नंबर्स।

वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वो प्रोफेशन है जिसमें किसी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजर को प्रोजेक्ट के शुरू से आखिर तक सही प्रबंध के साथ साथ उचित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना होता है, और सबसे बड़ी जो बात होती है निर्धारित समय अवधि में उस प्रोजेक्ट को पूरा करना, बाहर की और अंदर की बेहतर क्वालिटी पर ध्यान देना, और कम लागत के साथ अगर आप उसे तैयार करते हैं विद इन द रिसोर्सेज या उससे कम, तो भाई आप एक कुशल कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं। अब आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम क्या होता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट को शुरू से लेके आखिर तक कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम होता है उसे सही तरीके से मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन करना, और उसे कंट्रोल करने का काम कंस्ट्रक्शन मैनेजर का ही होता है। श्रमिकों को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ कौन कहाँ काम करेगा, कैसा करेगा, किस तरह से करेगा, प्रोजेक्ट डिजाइन करना, ठेकेदार का चयन करना, कारीगरों को रखने के साथ साथ सप्लायर्स जो हैं उनको मॉनिटर करना कि किस तरह की वो सप्लाई कर रहे हैं, काम का निरीक्षण करना, इसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट का बजट और प्रोसेस रिपोर्ट भी तैयार करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ये काम है इतना सारा।

वेलकम बैक दोस्तों। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। हमने आपको बताया कि ये क्षेत्र क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के तौर पर जो उम्मीदवार है वो नियुक्त किया जाता है और किस तरह से उससे काम लिया जाता है और फील्ड में जाके प्रोजेक्ट पर जाकर किस तरह के काम का ध्यान रखना पड़ता है, इस सब के बारे में हमने आपको बताया। अब क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। इस कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को गणित और विज्ञान सब्जेक्ट्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग वास्तुकला या इससे जुड़ी हुई स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और संबंधित सब्जेक्ट्स में स्नातक अभ्यर्थी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पीजी डिप्लोमा, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और बहुत सारे रिलेटेड कोर्सेज हैं। व्यक्तिगत विशेषताएं भी दोस्तों हर फील्ड में काम आती हैं और इस फील्ड में भी काम आएंगी। एक दोस्तों व्यक्तिगत विशेषता होती है जरा हट के सोचने की। आप में है तो आप इसके लिए बने हैं। इसके साथ साथ सोचने की क्षमता बेहतर हो, बेहतर संवाद हो, कौशल हो, पेशेंस हो, टाइम मैनेजमेंट हो, एनालिसिस हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, रिपेयरिंग और साजो सामान की जो सिलेक्शन करनी है उसके बारे में और बहुत सारी क्षमताएं हैं जो इस फील्ड में आपके काम आती हैं, आपके काम को और भी बेहतर करती हैं। तो इस तरह से ये व्यक्तिगत विशेषताएं जो हैं अगर आप में हैं तो आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या यूं कह लें कि यह फील्ड आपके लिए बना है। तो एक और म्यूजिकल नंबर के बाद आपको बताते हैं रोजगार के अवसर।

एक बार फिर इस प्रोग्राम में यानी लक्ष्य में हम आपके साथ हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता रखने वाले स्नातक उम्मीदवार प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कंट्रोल और मॉनिटर, प्रिक्योरमेंट और कोऑर्डिनेशन एग्जीक्यूटिव और बहुत से पदों पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से जिन्होंने पीजी डिप्लोमा, एमबीए, एमटेक इस तरह के कोर्सेज किए हैं, तो वो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं।

ये तो हैं रोजगार के अवसर जो इन क्षेत्रों में आपको मिल सकते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रूप में। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पेशेवरों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के संगठनों में काम करने के मौके उपलब्ध हैं। भारत के कुछ कंस्ट्रक्शन फर्म जैसे CPWD, PWD, दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इस तरह की तमाम एजेंसीज हैं जिनमें आपको मौका मिल सकता है काम करने का एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर के रूप में। अब एक सॉन्ग प्ले करते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे मेन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जहां से आप ये पढ़ाई कर सकते हैं।

लीजिए, अब सॉन्ग के बाद आपको बताएं प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में। आईआईटी दिल्ली और मद्रास, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च पुणे, RICS स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट। तो ये शिक्षण संस्थान हैं जहां से आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इस संबंधित जो पढ़ाई है वो करने के बाद आप इस क्षेत्र में अपना लक आजमा सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, 6-8 लाख रुपए सालाना आप इस क्षेत्र में कमा सकते हैं। बात वही है आपके एक्सपीरियंस की, प्रोजेक्ट को हैंडल करने की क्षमता की और मार्केट में आपकी क्या रेटिंग है, इस सब पर आधारित है पैकेजेस। लेकिन 6-8 लाख रुपए इस क्षेत्र में आप आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की।

0: आने वाले बृहस्पतिवार को हम फिर मिलेंगे करियर से जुड़ी हुई एक और जानकारी लेकर। अब आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल पुंज आप सबको कहता है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।
1: आप सुन रही थी कार्यक्रम लक्ष्य। आज इस कार्यक्रम में आपको निर्माण प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुनिए कुछ संदेश।

0: या पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
2: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, अपने आसपास की सफाई रखकर हम न केवल स्वयं को स्वस्थ रखते हैं, समाज को भी नया जीवन देते हैं। स्वच्छता अपनाकर ही हम हर बीमारी को दूर भगा सकते हैं।

हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, फरमाइश आपकी। आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता भगत, और भाई मेरे साथ हैं ढेर सारे खत जिनमें आपने लिख भेजी हैं अपनी फरमाइशें, फिल्मी फरमाइशें। तो चलिए सुनते हैं फिर ये पहली फरमाइश जो भेजी है हमें महादेव घाट अमलेश्वर से हमारे इन सब श्रोताओं ने। आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। गांव पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के आप हमारे श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक और आलौकिक। आइए सुनिए आपकी फरमाइश पर सरगम फिल्म का गीत। ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। लीजिए सुनिए।

सरगम फिल्म का ये गीत सुना हमारे श्रोताओं ने। अब आप ही की फरमाइश पर सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गाया, समीर का लिखा है गीत, संगीतकार हैं नदीम श्रवण। पसंद आप हमारे श्रोताओं की, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। इसी गीत को आपने भी सुनना चाहा है। कालका के आप हमारे श्रोता हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, भाटापारा दतरेंगी से इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है हमें द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो लीजिए सुनिए, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से ये गीत।

0: विविधा भारती की चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइश आपकी। तो अगला गीत सुनवाते हैं आपको, उससे पहले एक संदेश।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम का अगला गीत जो अब आप सुनेंगे, गुमराह फिल्म से हमने चुना है आपके लिए, आवाज महेंद्र कपूर की है। ये गीत है साहिर का, संगीत रवि का, और पसंद वो आप सबकी है। आप ही सुरजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। गुमराह फिल्म का यही गीत आपने भी सुनना चाहा है। आप हैं जी मुल्लापुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक जैन। मंडी अहमदगढ़ से राजा, नरेंद्र शर्मा, सविता शर्मा और पुष्कर शर्मा। तो हाजिर है आप सबकी पसंद। गुमराह फिल्म का ये गीत है, आवाज महेंद्र कपूर की।

कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से खत मिला है हमें। नाम है आपकी ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। डोंगरा गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और मास्टर तन्मय। गांधी चौक रोपड़ के हमारे नियमित श्रोता हैं हरदेव मीका, बलविंदर विर्ग, जयतेग विर्ग और मीका विर्ग। तो भाई आप सबकी पसंद है लैला मजनू फिल्म का गीत, इसे साहिर ने लिखा है। संगीतकार हैं मदन मोहन और जयदेव। आवाज़ इस गीत में आप सबकी जानी पहचानी, तो लीजिए सुनिए।

तो दोस्तों फरमाइश आपकी और पेश है कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। गीतकार हैं भिट्ठल भाई पटेल और संगीत उषा खन्ना का है। फरमाइशी खत हमें आप सबने भेजे हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। गांव नथाना पंजाब से हमारे श्रोता हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, गगन, रेखा, सीता, सोनी और गीता। कुछ और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये गीत सुनना चाहा है। आप हैं जी चकला बाजार सामाना से पप्पू, राजा, संगीता जिंदल और हंसमुख जिंदल। करणवीर हाउस भटिंडा के हमारे श्रोता हैं, आपने भी ये गीत सुनना चाहा है। परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंद्र, वीरेंद्र, सिमरन, रेशम, दमन और

तो हमारे श्रोता सुन रही थी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइश आपकी। ये कार्यक्रम श्रोताओं अब समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में

0: सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाटेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के हमारे मुंबई केंद्र से कार्यक्रम यादों की महफिल।
3: लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल में हम सुनेंगे उन्हीं गीतों को जिनमें है जिया, यानी दिल न लगने की कसक, दिल की बेचैनी और किसी अपने की कमी का एक भरपूर एहसास। तो आइए यादों की इस महफिल में आज दिल की उस बेचैनी को गीतों के साथ महसूस करते हैं। ठीक है,

इस कार्यक्रम का पहला गीत स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। कार्यक्रम में अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी की रचना, स्वर आशा भोंसले का और फिल्म का नाम फागुन।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत, गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आनंद। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा और धुन बनाई सलील चौधरी ने।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज की जो महफिल हमने सजाई है उन्हीं गीतों के नाम है जिनमें है इंतजार, तन्हाई और बेचैन दिल की आवाज। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम लाल किला। गीत को बहादुर शाह जफर ने लिखा और धुन SN त्रिपाठी की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेल यात्रा का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भंसारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा हुआ, गायिका चित्रा के एस और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल। फिल्म का नाम है नोटबुक। गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और एसिस कॉर्प।

यादों की महफिल कार्यक्रम की यह है अगली पेशकश। रविंद्र जैन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आवाज भूपेंद्र की, फिल्म का नाम दासी।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई दी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता और बस उसकी याद साथ चलती है। तो चलिए, इन्हीं गीतों के साथ आज की ये महफिल यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और कहानी और ऐसे ही कुछ खास नगमों के साथ। और इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविधा भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। दोपहर का एक बजा है। अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दी। तो श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे, जिसके फौरन बाद प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक हिंदी में समाचार आप शाम 6:10 पर भी सुनेंगे और फिर शाम 6:20 पर जालंधर केंद्र से ही रिले करेंगे आपके लिए प्रादेशिक पंजाबी समाचार। हमारे यहाँ से कुछ फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप दोपहर 1:15 पर। फिल्मी गीत शाम 5:05 पर भी सुनवाए जाएंगे। विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर,

दोपहर 1:30 पर। फिर वहीं से श्रोताओं दोपहर 2 बजे होता है कार्यक्रम त्रिवेणी। दोपहर 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे आपके लिए हिंदी में समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से ही हिंदी में समाचार। शाम 6 बजे, रात 8:45 पर और फिर रात 11 बजे भी हम रिले करेंगे श्रोताओं। सदाबहार नगमे आप सुना करते हैं दोपहर 2:30 पर, जो हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया करते हैं। दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम वहीं से सखी सहेली। आज शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा पिटारा। पिटारा कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन पाएंगे प्रोग्राम हेलो फरमाइश। हमारे केंद्र से शाम 5:20 पर एक प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनवाएंगे आपको शाम 5:30 पर।

0: श्रोताओं, हमारे केंद्र से समाचार दर्शन कार्यक्रम भी सुनेंगे आप। समय रहेगा 6:30। कुछ पंजाबी गीत सुनिएगा 6:40 पर। पंजाबी गीत हम आपको 7:47 पर भी सुनवाएंगे। पंजाबी गीतों का ही हमारा एक कार्यक्रम होता है सुरसांझ, ये आप सुन सकते हैं 10:32 पर। विविध भारती के मुंबई केंद्र से सैनिक भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जयमाला आप सुना करते हैं 7:00। हमारे यहाँ से प्रादेशिक मुख्य समाचार भी प्रसारित किए जाते हैं 7:45 पर और फिर 10:30 पर। हवा महल कार्यक्रम होगा 8:00। ये कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करते हैं आपके लिए। आज इसमें एक प्रहसन सुनेंगे, टपकते सितारे। नए फिल्मी गीत सुनना चाहें तो चित्रलोक कार्यक्रम में सुन सकते हैं 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम होगा 9:30 पर। फनकार हैं फिरोज खान। उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत होगा 10:00। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, इस समय 1:05 में हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक हिंदी समाचार। इसके फौरन बाद श्रोताओं, जालंधर केंद्र से हम आपके लिए रिले करेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है और यही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की अहम भूमिका है।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जान न

0: समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन के राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया।

बताया कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। करनाल जिले में धान की पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक 7 सदस्यीय समर्पित पराली सुरक्षा बल का गठन किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस खरीफ फसल सीजन के दौरान इस टीम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. राहुल रैया करेंगे, जबकि उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, उप निदेशक कृषि विभाग, उप निदेशक पशुपालन विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी बल के सदस्य होंगे। ये प्रवर्तन टीम पुलिस अधिकारियों, कृषि विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारक विभागों के साथ मिलकर खेतों की निगरानी करेगी और पराली जलाने की किसी भी घटना पर तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कृषि विभाग के उपनिदेशक जसविंदर सिंह ने बताया कि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा 750 कर्मचारियों के कार्यबल को बनाया गया है, जो खंड व ग्राम स्तर पर आगजनी की घटनाओं पर नजर रखेंगे। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने पंचकुला, चंडीगढ़, नारायणगढ़ और कुरुक्षेत्र में आयोजित नमो क्रिकेट लीग में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए युवाओं से खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। श्री बडौली ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। एशियाई खेलों में करनाल के शामगढ़ गांव की रहने वाली भारतीय निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा में राइजा ढिल्लों ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। राइजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान की भारतीय महिला टीम ने 331 अंक के साथ कांस्य पदक जीता है। ये एशियाई के महिला स्कीट टीम इवेंट में भारत का पहला पदक है। राइजा ने अकेले 125 में से 111 अंक जुटाकर टीम की पदक जीत में अहम योगदान दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: दोस्तों, फिरोज़ खान हिंदी सिनेमा के ऐसी लोकप्रिय और बड़ी ही स्टाइलिश अंदाज के अभिनेता रहे हैं, जिनकी खास अभिनय शैली और फिर जो उनके संवाद बोलने की अदायगी है, उन्होंने एक्शन फिल्मों का पसंदीदा सितारा बना दिया था। अपने अद्भुत और अनोखे से अंदाज के जरिए अपनी एक अलग ही पहचान बनाई इन्होंने। अभिनय में, उनके हाव भाव में, चलने के अंदाज में, यहाँ तक कि ड्रेस सेंस में भी पश्चिम का खासा असर दिखा, और कॉबॉय वाली इमेज जिसे हम कहते हैं वो इनकी थी और पसंद भी की गई। पर अपने फिल्मी सफ़र में कुछ बेहतरीन फिल्में भी इन्होंने की हैं। बड़ा ही सहज अभिनय किया उसमें और छाप छोड़ी। ऊंचे लोग, उपासना, आरजू, ये कुछ ऐसी ही फिल्में थी इनकी। तो आइए सुनते हैं, इन्हीं पर फिल्माया गया अपराध फिल्म से एक गीत।
1: तुम हो हसी वफा, तुमको मेरी जान, आते आते

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तो श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में फिरोज खान के गीत सुन रहे हैं आप। फिरोज खान एक बेहतरीन निर्माता निर्देशक भी रहे हैं। बड़ी भव्य और आकर्षक दृश्य बन पड़ते थे उनकी फिल्मों के। रोमांच रहता था, प्रेम रहता था और मनोरंजन से भरा हुआ संगीत तो उनकी फिल्मों की जान है। कुर्बानी हो, अपराध, धर्मात्मा, जांबाज, दयावान, ये कुछ ऐसी फिल्में थी उनकी। श्रोताओं, ये शानदार अभिनेता हमेशा से ही अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए पसंद किया गया है। पर्दे पर आते ही सबका ध्यान खींच लेते थे। तो उनकी याद में आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म से ये गीत।

0: आप सुन रही थी कुछ फिल्मी गीत। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए कुछ संदेश सुन लेते हैं।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोतो, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर, जो हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
2: ओ खई के पान बनारस वाला।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: बताइए दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना, ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूँ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी, मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ ना कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीज़ें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?

0: झुमका घिरा रहे बरेली के बाजार में। तो चलिए, बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: यात्रा पर निकल चुके हैं तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूँ जहाँ से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से। और अभी पुणे में हूँ, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा, जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजरात फिल्म अखंड सौभाग्यवती की एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूं जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है, झट जाओ चंदन हार लावो, घूंघट नहीं खोलू। हीरो कहते हैं, नाना ना नखरा बदा, नाना नासो नाद, तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकाविश। अहमदाबाद, जवाब में हीरोइन कहती है, वडोदरे लावो लऊ ने करूं सूरत मालेर, हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह, क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश, रखड़ीश हूँ राजकोट, पण तारी साथे नहीं रहूं, मने मंगाविश तू लोटरे। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में, और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं, हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। सच मानिए, बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है। बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहाँ, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत।

0: आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: मेरे राजीव का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गाँव तो अपना है ही। और वही एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूँ और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूँ और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का

काम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक शोधा लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने अपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गई लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियाँ, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्य मई इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अभी तो पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई।

0: साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम CID।
1: मैं दिल

0: मेरी जान।
1: जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए, है ना, क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफर को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ही सफर। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्ते। आज त्रिवेणी में हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कला होती है, जो जितना अधिक कार्य कर लेना चाहता है और जो जितना अधिक पढ़ता है उसमें उतनी अधिक जिज्ञासा होती है। उसे यदि सही समय पर प्रश्नों के उत्तर मिल जाए या उसे क्या करना है इनका व्यावहारिक ज्ञान मिल जाए या ढूंढ लें, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, संवार सकता है अपने सपनों को।

अक्सर हमारे दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न चलते रहते हैं। हमारे इतने सारे विचारों में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इनमें अनगिनत विचारों के बीच हमें अपने उन विचारों को चुनना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी निर्भर होगी। वो विचार हैं अपने लक्ष्य का विचार, जो भी हमारा लक्ष्य है उसका विचार, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

हम अपने लक्ष्य के साथ जीना शुरू करें। हमारा लक्ष्य सोने, खाने, उठने, बैठने में शामिल हो और उस लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को ढालना शुरू करें और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को अपने अंदर समाहित करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से तर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का

0: अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश सिंह राठौर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने

0: पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
2: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
4: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे

0: के कारण NH-157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जाने मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल्लैयो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती, तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
2: बिल्कुल। और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है, और बताओ कैसे।
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता है।
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना, जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष

0: वो जल्दी से आएंगे.
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज़ याद करते हैं उन्हें, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं,
0: हाँ.
1: कि जो हमारे विषय हैं कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है,
0: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते
1: हाँ,
0: हैं उसे.
1: खाद्य पदार्थों का
0: हाँ
1: स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब, हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं, अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं, उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो अच्छा
0: बिल्कुल. लिख के
1: लगेगा।
0: भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से, सब्जी वगैरह
1: हाँ
0: लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया. ऐसा करते हैं
1: जी
0: या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं,
1: हाँ
0: ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं. और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में. सोचो, एक अंतरिक्ष है, एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई
1: बिल्कुल
0: पार नहीं. और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे
1: बिल्कुल
0: अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो. पता नहीं कब से, शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है. अभी भी
1: देखो,
0: हम
1: ये सब चीजें
0: चौंक जाते हैं.
1: इतनी अद्भुत हैं, मतलब अद्भुत दुनिया ही है, और
0: बिल्कुल
1: उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है। कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती हैं और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है, तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है,
0: हाँ.
1: वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
0: कहते हैं ना, जो इंसान है वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बना है,
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो
1: क्या
0: उसके मन
1: बात
0: में छुपी होती
1: है,
0: हो, है
1: बिल्कुल।
0: ना.
1: तो इस पर बातें करेंगे, और मुझे कुछ कहना है
0: हाँ.
1: कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि 2 महीने पहले, एक हफ्ते
0: हाँ.
1: पहले, कि आज सुबह सुबह रूठे,
0: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती
1: आरती
0: से
1: से रूठ
0: रूठ
1: गए,
0: गई.
1: तो इस तरह के कुछ अपनी
0: हाँ.
1: यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है, तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हैं हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है, तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
0: और
1: ना।
0: जब एक कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है.
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहाँ की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल
1: ठंडी हवा
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिख कर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अतः नीला विशाल रूप, क्षितिज जहाँ आकर झुकता है, खिलती जहाँ सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना, उसे जानना शुरू किया, तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ।
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, और बहुत ज्यादा जो गहराई होती है वहां पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस, यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जरा सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए, जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल, और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहां पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से, कई जगह गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहाँ की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताज़ा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं महादेशीय

0: छज्जा, अंत, रीप, खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधानों अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहरा से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको उनके मार्ग में रुकावट आएगी। पहली
1: और
0: बात तो।
1: सबसे बड़ी चीज है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना, वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके
0: बिल्कुल
1: से।
0: सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है, जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
0: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो आरती देखो हमारे साथी क्या लिखते हैं बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है, बल्कि रहस्यमय जीवन तो अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है, तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहाँ पर पानी क्या सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक मैं साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है, जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ

0: बारे में उन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
1: सहेली।
0: तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज़ होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है, तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था, उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी। इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं, बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला

0: का हिस्सा बनाया। ऊषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल, पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं और धीरे धीरे ऊषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: ऊषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल, ऊषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें, और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, उस छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज, दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
5: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि इन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
5: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये है? चाय पीने के लिए गाने गाके
4: मना लेते हैं।
5: बिल्कुल मना लेते हैं।
4: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
5: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
4: सब बजते हैं। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
5: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलियाँ करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारी वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
5: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए हमें। गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
4: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है, और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
5: और साथ ही एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा, और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
4: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसा रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में। देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी

0: मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने
1: हाँ,
0: मैसेज नहीं किया तो रूठ
1: किसी ने हमें कुछ
0: गए
1: मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ
0: तो
1: गए
0: हम रूठ गए, है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दी है।
0: जब इन्होंने गाने भेजी दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: बिल्कुल
0: देते
1: सुनवा
0: हैं।
1: देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे

0: रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए, और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ का ये कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब, किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है, या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा, और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
0: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्तों और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी हैं जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीज़ें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती है और बहन को डांटने लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त
1: बिल्कुल
0: पर हो गया है,
1: दूर
0: तो
1: पास
0: हाँ
1: सारे श्रोता रहते ही
0: जी,
1: हैं।
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और
0: और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आया।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: 2-3 बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल।
1: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं गुलजार साहब
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया है, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप आने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर के क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, परखे 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713, और जो सरबती गेहूं रहते हैं ना सर, उसमें पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूं और हमारे क्षेत्र का गेहूं सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं होता है, और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं
1: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं, तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ,
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नग में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में 1 बजे से आता है जो आप शब्द नहीं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल, दुआएं बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी।
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी।
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनके क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गांव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है
0: अच्छा,
1: बहुत। हाँ,
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किलात होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दूध पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वो हमें नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये कुकवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली रोड है ना, जहाँ पर है जी, पास में पड़ता है अपना गांव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गांव की क्या हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नग में, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका?
0: अच्छा,
1: नाम ले।
0: ऐसा, सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगाई भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पथ, उसने गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है?
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते सर
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मन चाहे प्रोग्राम में इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुँच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्र सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002662। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल ने आज कहा कि विद्युत मंत्रालय नई राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार कर रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में इसका मसौदा जारी किया था। मंत्रालय ने हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को इसमें शामिल किया है और इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन की सिलिकॉन वैली में आज 2000 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अडानी आरोग्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह हॉस्पिटल देश में अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा। इसमें 1000 बिस्तर गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप राज्य के कई क्षेत्रों में अगले कुछ वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म में प्रसिद्ध गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक से बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगी। श्रोता इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: पेश है फिल्म संगीत और पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार भूपेन हजारिका, गीतकार गुलजार और फिल्म का नाम है रुदाली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम और मधुश्री की आवाजों में। फिल्म का नाम था जोधा अकबर। आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत है श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है साइना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. आज हम रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ऐसे रिश्ते जो माता पिता और अपने यंग चिल्ड्रन के बारे में है. रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स. पेरेंटिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. उसमें भी अगर बच्चा टीनेज यानी 13 से लेकर 19 साल के बीच है तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है. वजह यह है कि इस दौरान उनमें शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव होते हैं. दूसरी ओर इसी उम्र में बच्चे की शिक्षा ऐसी पड़ाव पर होती है जिससे उसका पूरा करियर तय होता है. टीनेज में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से बच्चे के सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इससे बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनुशासीन हो सकता है. इस उम्र में बच्चे अपनी प्राइवेसी को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं. यही कारण है कि वे बड़ों से अपनी कुछ बात छुपाने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर सही समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बच्चों को भविष्य में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए टीनेज के दौरान बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. आज रिलेशनशिप प्रोग्राम में, खासकर आज लम्हे के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेरेंट टीनेजर रिलेशनशिप के बारे में. इस प्रोग्राम में टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग की साथ ही जानेंगे कि टीनेजर बच्चों की पेरेंटिंग में माता पिता की क्या भूमिका है, क्या किरदार है. इस उम्र के बच्चों के साथ पेरेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर और दोस्तों से ज़्यादा करीब होने लगते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना कि उनके दोस्त समझ सकते हैं. एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक टीनेज बच्चों की परवरिश परिवार के लिए सबसे कठिन चुनौती में से एक है. हार्मोन में बदलाव और शारीरिक परिवर्तन जैसे चीज़ें से जुड़े रहे टीनेजर्स को लगता है कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, खासकर पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं. इससे वे अकेले और भ्रमित महसूस कर सकते हैं. वही पेरेंट्स इस बात से परेशान हो सकते हैं कि उनका बच्चा अब पहले की तरह अनुशासित नहीं है. कई बार ये चीज़ें बच्चे और पेरेंट्स के बीच मनमुटाव के वजह भी बन जाती है. इसलिए टीनेजर्स की पेरेंटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है. तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बच्चों में कैसे बदलाव आते हैं टीनेज में. टीनेज के दौरान बच्चों में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि ये बदलाव शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक तीनों तरह के हो सकते हैं. टीनेज बेहद नाजुक उम्र होती है. इसमें बच्चे नए दोस्त बनाना, नई नई चीज़ों को जानना, समझना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इसके अलावा उनमें कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आता है, दोस्तों की कंपनी ज़्यादा पसंद आती है, गैजेट से अधिक लगाव होता है, खान पान से जुड़ी आदतों में बदलाव होता है. इस उम्र में बच्चे किसी भी नई चीज़ को जानने समझने के लिए एक्साइटेड रहते हैं. वे बिना किसी की सलाह के खुद से निर्णय लेने चाहते हैं, लेकिन कई बार वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं. इसीलिए टीनेज में बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. इसमें माता पिता ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं. उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. पेरेंट्स को उनके साथ बैठकर हर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, जिससे वे कोई भी निर्णय बिना पेरेंट्स की सलाह के न लें.

टीनेज में बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है। ऐसे में माता पिता को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो कब कहाँ आते जाते हैं, मोबाइल फोन में क्या देखते हैं, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने बच्चों का भविष्य तैयार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। दैट टू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। जब बच्चे बात करते हैं तो पूरा फोकस्ड रह के अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उनकी पूरी बात सुने, बीच में न टोके, उन्हें पर्सनल स्पेस दे लेकिन दिनचर्या पर नजर बनाए रखे। गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर लिमिट तय करें। ये भी जानकारी रखें कि वे अपने फोन में क्या देखते हैं। उन्हें अपने मन की बात शेयर करने के लिए प्रेरित करें। उनके सपने और लक्ष्यों का सपोर्ट करें। उन्हें हेल्थी डाइट और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करें। उन्हें स्वतंत्रता दें लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाएं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए मारने पीटने का तरीका अपनाते हैं जो बिल्कुल गलत है। इसका बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। वे माँ बाप से डरने लगते हैं और उनके साथ अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराते हैं। इसके अलावा माता पिता टीन एजर बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ और गलतियां करते हैं जिनसे बचना चाहिए। इसे कैसे समझे हम? टीन एजर्स के पेरेंट्स में न करे कैसे गलतियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा न पेश आए कि बच्चे बात करने से डरे, उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाए, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना न करें, उसे हर चीज के लिए मना न करें, किसी बात पर चिल्लाए या गुस्सा न करें, बच्चों को मारने पीटने की गलती कभी भी न करें। दोस्तों, अगर बच्चे जवाब देते हैं तो डांटे नहीं, समझिए उन्हें। कभी आप भी ऐसे थे, आप भी उस किशोरावस्था से गुजर के ही अडल्ट बने और उसके बाद एक पेरेंट। अपने बचपन और अपने यंग डेज को याद कीजिए। टीनेजर बच्चों के पेरेंटिंग के लिए कुछ सुझाव है जो लम्हे प्रोग्राम में चेतन आपसे शेयर करेंगे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर और आर्ट जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। एनकरेज देम टू लर्न फाइन आर्ट्स टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद प्रोडक्टिव वर्क। उनके अच्छे प्रयासों और उपलब्धियों की तारीफ जरूर करें। उन्हें लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाएं। उन्हें उनकी पसंदीदा एक्टिविटी करने दें, उन पर लगाम न लगाएं। उन्हें एक्सरसाइज करने और हेल्थी डाइट लेने के फायदे को एक्सप्लेन करें। बच्चे से सड़क पर सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बात करें। उनसे ड्रग्स, शराब और स्मोकिंग के खतरों के बारे में एक्सप्लेन करें। काउंसलिंग दें। किशोरावस्था बच्चे और माता पिता दोनों के लिए एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में दोनों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रिश्ते में तनाव आने की संभावना होती है। जब माता पिता पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। टीनेजर्स बच्चे मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में टीनेजर्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार ही सही राह दिलाती है, वरना मामला बिगड़ जाता है। टीनेजर्स बच्चों को दोस्त बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ खास बॉन्ड डेवलप करना होता है। ऐसा करने से रिश्ते एक अलग मुकाम हासिल करता है। उनकी रुचि में रुचि दिखाएं। यह जरूरी नहीं है कि आपको उनके शौक के बारे में पूरी जानकारी हो, बस दिलचस्पी दिखाएं। शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, लाइक देयर हॉबीज, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस, गोल्स, और उनका समर्थन करने के लिए जितना हो सके भाग ले। With this information about parents and teenage relationship in today's Lamhe program, we come to the conclusion now. And I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. Call or message us on 0951522703 9. That's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com. That's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla. That's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center. Just

0: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।
1: स्वच्छता ही सेवा है।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है अगला स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं
3: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था, और तो और गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओ, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
3: तो श्रोताओ, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी,
3: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
2: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
3: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
2: जी,
3: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
2: जी,
3: यही तो है नवाचार।
2: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद।

0: इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी,
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए।

0: जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
3: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए सोचिए सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने

0: चिट्ठी अलमारी में रख दी।
1: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
2: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
1: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
2: अच्छा,
1: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
2: अच्छा,
1: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
2: हाँ
1: ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा।

0: शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
0: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
0: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
1: लगभग 10,000 बार।
0: 10,000 बार?
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा,
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह।
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
1: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया, और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।
4: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे। स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।
3: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। ते हुण थोड़ी ही देर च आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी समाचार रिले कीते जाणगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशू के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी

0: शंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz से।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।

ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण सरकार का लक्ष्य।

0: नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण सरकार का लक्ष्य। सरकार ने 35 से 40 प्रतिशत तक मूल्य वर्धन हासिल करने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता पर बल देते हुए सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से गीता महोत्सव को भव्य और गरिमापूर्ण बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों में राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने पर बल दिया और हरियाणा पुलिस ने हिसार के एयरपोर्ट चौक पर एक गाड़ी से लगभग 1 क्विंटल 15 किलो गांजा बरामद किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गाँव का अच्छा प्रयोग दूसरे गाँव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
2: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस 138वीं कड़ी का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से मिलकर गीता महोत्सव को भव्य और गरिमापूर्ण बनाने का आह्वान किया है। वो आज कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 के आयोजन को लेकर धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र का वातावरण गीता की भूमि की गरिमा के अनुरूप स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रहे, इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा।
3: हर योगदान जो

0: क्या होता है, एक स्वयंसेवक का सही मार्गदर्शन, एक दुकानदार का आत्मीय व्यवहार और एक नागरिक का स्वच्छता के प्रति आग्रह, ये महोत्सव की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं चाहूंगा कि आज उस स्वच्छता का एक बड़े स्तर के ऊपर शुभारंभ हो, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं अलग अलग इस स्वच्छता अभियान के अंदर लगे। और जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर कुरुक्षेत्र का वातावरण गीता की भूमि की गरिमा के अनुरूप हो, दीपावली पर हम अपने घर को स्वच्छ करते हैं, आने वालों का स्वागत भी करते हैं, गीता महोत्सव के प्रति भी हर परिवार उसी उत्साह और अपनापन इस गीता जयंती में होना चाहिए।
1: उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत अतिथि देवो भव की भावना से किया जाए, ताकि प्रत्येक आगंतुक को कुरुक्षेत्र में अपनत्व और सम्मान का अनुभव हो। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ कुरुक्षेत्र, पवित्र कुरुक्षेत्र को सामूहिक संकल्प बनाने का आह्वान किया। मंदिरों, आश्रमों, धर्मशालाओं, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने में सहयोग का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सभी प्रमुख चौकों को महाभारत कालीन थीम पर विकसित किया जाएगा। इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में कनीपला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित निपुण चित्रकला प्रदर्शनी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों में राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करने पर बल दिया। माधव सभागार एवं परम पूज्य गुरु के भित्ति चित्र का अनावरण करने तथा चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की कल्पना में आकार लेता भारत ही आने वाले समय में वास्तविक भारत के रूप में हमारे सामने आएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को उचित मंच और प्रोत्साहन देकर उनमें रचनात्मकता, संस्कार एवं सेवा भावना को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया और विद्यालय में सोलर पैनल लगाने के लिए 11 लाख रुपए व कनीपला गांव के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बरवाला की ब्राह्मण धर्मशाला में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत 2 दिवसीय सेवा सेतु शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि नागरिकों को मौके पर ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मीडिया से बातचीत में श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत ये शिविर लगाए जा रहे हैं।
2: सेवा सेतु अभियान के अंदर यहाँ 2 दिवसीय शिविर लगाया गया है और इन 2 दिनों के अंदर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकेगा, किसी की कोई समस्या होगी तो मौके पे निदान कर सकेगा। इस समय तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी जो है यहाँ बैठे हुए हैं।
1: धान की खरीद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री गंगवा ने कहा,
2: धान खरीद के लिए सरकार जो है बिल्कुल गंभीर है। हरियाणा के अंदर तो 24 के 24 फसलें हम जो है MSP पे खरीद करने का काम करते हैं, धान भी हमारा MSP पे खरीदा जाएगा।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत आज पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में भी सेवा सेतु शिविर लगाया गया। SDM भूपेंद्र सिंह की देखरेख में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी व लाभ प्रदान करना है। उपमंडल अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों से इन शिविरों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। हरियाणा पुलिस ने हिसार के एयरपोर्ट चौक पर आज नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 1 क्विंटल 14 किलो 910 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस नशे की खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण सरकार का लक्ष्य। सरकार ने 35 से 40% तक मूल्यवर्धन हासिल करने का लक्ष्य रखा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है सेवा संकल्प अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण के संकल्प के साथ लागू किए गए श्रमिक कानून और मानव और धरती माँ के स्वास्थ्य पर केंद्रित प्राकृतिक खेती अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की कार्यशैली सेवा और संकल्प की भावना पर केंद्रित रही है। इस दौरान कई ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान चलाए गए हैं जिससे देश के हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया है। सरकार द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में बदलने का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाना था। श्रमिक कानूनों पर हमने चंडीगढ़ में श्रम आयुक्त आकाश मित्तल से बातचीत की।
2: जितने भी पुराने 29 के करीब लेबर लॉस थे उनको सबको सरल करके अब 4 कोड्स के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है। पहले जैसे मिनिमम वेज एक्ट था, पेमेंट वेजेस एक्ट था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट था, इनको मिलाकर एक कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है जिसमें कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद एक कॉमन फ्लोर वेज बनेगी जो कि एंटायर कंट्री पे एप्लीकेबल रहती है, उसके बेसिस पे मिनिमम वेजेस बन जाती हैं और फर्दर इस कोड के आने से टाइमली वेजेस इंश्योर हो जाएंगी और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान बनेगा और जैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वेजेस बना दी गई है और एक इस चीज को सिक्योर किया गया है कि बेसिक पे 50% से कम नहीं होगी जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वर्कर को ग्रेचुटी कम मिलती थी, अब उस चीज के लिए भी सिक्योरिटी हो चुकी है और डिजिटल वेज रजिस्टर्स बनाने की सुविधा दे दी गई है।
1: वर्ष 2025 में सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों में बड़े पैमाने पर किए गए बदलाव को लेकर ट्राई सिटी भवन कामगार यूनियन के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने नए श्रम कानूनों के कुछ बिंदुओं को श्रमिकों के लिए बेहतरीन बताया।
3: 2025 में जो भी लेबर कोड में बड़े पैमाने पर बदलाव है, इस 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में विलीन कर दिया गया है जिसमें श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक स्पष्ट और व्यापक बनाया गया है। वहीं साथ दूसरी ओर उद्योगों के अनुपालन को भी सरल बनाया गया है। अगर वर्कर की बात करें तो मिनिमम वेज और समय पर वेतन का अधिकार, अपॉइंटमेंट लेटर, सोशल सिक्योरिटी, एनुअल हेल्थ चेकअप और सुरक्षित वर्किंग कंडीशन जैसे प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र में भी माइग्रेंट और प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी में शामिल किया गया है जो बहुत अच्छी बात है और महिलाओं को कंसेंट और सेफ्टी मेजर्स के साथ नाइट शिफ्ट सहित सभी प्रकार के कार्यों में अवसर देने का प्रावधान भी है।
1: श्री रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रमिक कोड में जटिलताओं को कम किया गया है।
4: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। जो नया कोड है उसमें सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न प्रावधानों से अनुपालन की जटिलता कम करने की कोशिश की गई है और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर व्यवस्था भी सिर्फ निरीक्षण की बजाय मार्गदर्शन की दिशा में बहुत बड़ा बदलाव है। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जबकि प्रति सप्ताह 48 घंटा की सीमा में ओवरटाइम को दोगुना करने का प्रावधान भी है जिसमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के अनुसार बेहतर मैन पावर प्लानिंग संभव हो सकती है।
1: अंबाला में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अरुण जोशी ने कहा कि नई श्रम संहिता श्रमिकों के हक में है।
5: केंद्र सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए श्रम कानून बनाए हैं जिससे कि श्रमिकों के जीवन में उत्साह का माहौल बन हो गया है। हरियाणा में भी यह 4 श्रम कानून लागू हो चुके हैं। जिला अंबाला में लगभग सरकारी और प्राइवेट श्रमिक 10,000 के करीब है तो उन कारो कानूनों से श्रमिकों के जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं। कृषि और वेतन संरचना के विषय में, सामाजिक सुरक्षा के विषय के अंदर, महिलाओं के विषय के अंदर सब प्रकार से श्रम कानून जाए हैं और श्रमिकों और कर्मचारियों के में बनाए गए हैं।
1: मोदी सरकार ने जैविक और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दिया है। हरियाणा सरकार

0: इस कार्य को सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आकाशवाणी समाचार को बताया,
1: इसी बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र के अंदर 2000 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती को करेंगे और उसको चिन्हित कर लिया है। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं ताकि उसमें खाद और पेस्टिसाइड ना डले और प्राकृतिक खेती के लिए हमने एपीडा से प्रमाणित लैब स्थापित कर रहे हैं ताकि उससे उसका प्रमाण पत्र लेकर के उसको हमारा फूड विभाग साथियों परचेज कर सके और उसको मार्केट से 10% ज्यादा रेट के ऊपर उसको खरीदने का प्रावधान भी हमने किया है। और इसी प्रकार हमने मोरनी ब्लॉक वहाँ पर सब्जियां मसाले बनाने का काम प्राकृतिक तौर से होगा उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों हम किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए कई अन्य प्रोत्साहन भी दे रही है।
1: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2000 एकड़ के क्लस्टर पर जिसका मैंने जिक्र किया है एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर के नाम से प्राकृतिक खेती शुरू की जा रही है। और आइए हमने ये निर्णय भी किया है कि उसके ऊपर किसानों को जो नुकसान होगा साथियों उस नुकसान की भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करेगी।
0: हमने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले हरियाणा के कुछ किसानों से भी बातचीत की। कुरुक्षेत्र जिले के गाँव अहमदपुर के गुरदीप सिंह ने प्राकृतिक खेती को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
2: मैं पिछले 14-15 साल से प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ। मेरे को एक फायदा है, लोगों के खेतों में तो बीमारियां बहुत रहा और मेरे खेत में बीमारी नहीं रही और खाने में स्वाद भी अच्छा है। प्राकृतिक कृषि में मेरे पानी की 70% बचत हो रही। अगर लोग लगावा तो मुझे उनके मुकाबले 30% पानी ही लगाना पड़ता है। इसमें मैं अच्छा धन मल्चिंग करता हूँ, जैसे पराली की या फसल अवशेष की, तो वो मल्चिंग है जो वातावरण से पानी सोख लेती है और पौधे को देती है, जिस कारण मेरे ये बचत हो रही है पानी की। और इसके कारण खाद और दवाई के दुष्प्रभाव नहीं है, जमीन उपजाऊ बन चुकी है, केंचुओं की संख्या भरपूर है। ये आने वाला भविष्य ही प्राकृतिक खेती का जी।
0: हिसार जिले के गांव रावलवास खुर्द में प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार ने कहा कि प्राकृतिक खेती उनके लिए लाभकारी साबित हुई है।
3: मैं वर्ष 2018 से प्राकृतिक खेती करता हूं। ये खेती करने से मुझे लाभ मिला और ये खेती मेरी कामयाब हुई है। मैं मुख्य रूप से शुरुआत से गेहूं प्राकृतिक बोनी शुरू की, जो मेरी ग्राहकों ने हाथों हाथ मेरे खेत से ही ली। इस प्रकार मुझे उत्साह हुआ और मैंने पूरे खेत 5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दी। 2 वर्ष बाद मैंने काबली चना भी लगाया, उसमें भी मुझे अच्छी सफलता मिली और मैंने इन चने काबली चने की खेती को फसल को खुद मार्केटिंग किया। इसके साथ साथ मैंने 3 कनाल सब्जी भी लगानी शुरू की, वो भी सब्जियां भी लोगों ने काफी अच्छे से पसंद की और मेरे खेत से आकर ले जाने लगे।
0: कृष्ण कुमार ने रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग को भूमि और मानव के लिए अत्यंत हानिकारक बताया।
3: जीवामृत बनाकर हम खेतों के अंदर चलाएं और देसी खाद डाल दें तो हमें रासायनिक खादों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और कीटनाशकों की जगह भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम प्राकृतिक कीटनाशक बनाकर जो हमें बाजार से नहीं खरीदना पड़ता था वो कोई हमारे फसल या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होता, उस प्रकार हम कीड़ों की भी रोकथाम कर सकते हैं। यद्यपि रासायनिक खाद प्रयोग न करने से बहुत कम कीटों का नुकसान होता है और प्राकृतिक तरीके से उगी गई फसल बीमारियों को भी झेलने में सक्षम रहती है। इन फसलों के अंदर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होने से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है तथा जुताई भी कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इससे केंचुओं की मात्रा ज्यादा होने से जमीन सूख रहने लगती है।
0: प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार ने कहा कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि प्राकृतिक खेती से किसान की आय कम होती है।
3: लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती शुरुआत में कम पैदावार होती है, शायद ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ और आप भी अच्छे ढंग से करेंगे तो नहीं होगा, पैदावार उतनी ही होगी और भाव आपको 2 से 2.5 गुना मिल जाएगा। जैसे मेरी गेहूं आज 7,000 रुपए प्रति क्विंटल खेत से ही बिक जाती है, चना 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, मैं सारा साल खुद बेचता हूँ, मतलब मार्केटिंग मेरी खुद की है। किसान इस खेती को करने के साथ साथ मार्केटिंग भी अपनी खुद करे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। मेरी सब्जियां भी जैसे आलू 40 रुपए प्रति किलो बिकता है, गाजर 40 रुपए किलो, मटर 80 रुपए किलो, इस प्रकार सर्दी की 10

0: प्रकार की सब्जियां मेरे खेत से आकर लोग ले जाते हैं। ले जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है, बल्कि इतनी मैं पैदा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार 5 एकड़ जमीन से मुझे अच्छी पैदावार होती है।
1: कुरुक्षेत्र के गांव मंगोली जाटान के किसान जसवीर आर्य ने भी प्राकृतिक खेती को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
2: मैं जसवीर आर्य गांव मंगोली जाटान से बोल रहा हूं। मैं पिछले 12 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। प्राकृतिक खेती में के जो लाभ हैं, देखा ये है कि एक तो हमारी जो अब बिना खाद और दवाई के फील्ड जो है उनके बराबर चली गई है, दूसरी पेस्टिसाइड वाली जो फसलें हैं उनके इक्वल चली गई है। और दूसरी बात यह है कि हमारी फसल का जो रेट है बाजार में वो इनसे हमें एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। जो है गन्ने से हम गुड़ बनाते हैं, गुड़ से हमें क्या लाभ है, हमारा गुड़ अच्छे रेटों में बिक जाता है, उससे हमारी जो इनकम है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जितना बच सके हो दवाइयों से और इसमें हम जैसे प्राकृतिक गेहूं उगाते हैं, हमारी नेचुरल फार्मिंग में 2 पानी से ही फसल हो जाती है, बहुत बढ़िया गेहूं होती है। बंसी गेहूं यूज करके खाने में बहुत स्वादिष्ट है और जौ की वैरायटी है बहुत अच्छी है, ना पेट में कोई दिक्कत, बहुत सारी बीमारियां ठीक करती है।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी और प्रस्तुति सहायक।

हुण तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम समाचार दर्शन। असीं आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों बोल रहे हां एफ एम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुण पेश ने पंजाबी गीत ते शुरुआती गीत सुखशिंदर शिंदा दी आवाज़ च।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
4: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
5: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
5: HIV
4: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
6: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
7: FM 107.2 MHz ते ई आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। ते हुण तुसी सुनोगे प्रोग्राम जयमाला, जो विविध भारती दे मुंबई केंद्र तों रिले कीता जावेगा।

जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए आशा भोसले का गाया मेरा साया फिल्म का गीत, बोल लिखे राजा मेहंदी अली खान ने, संगीत मदन मोहन का।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक

0: संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज लेके जा।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
4: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
4: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
7: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
8: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
7: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
8: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
7: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
10: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
9: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
10: एचआईवी
9: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
11: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
7: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
8: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
7: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
8: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी

0: करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

जयमाला कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए जतिन ललित के संगीत निर्देशन में निदा फाजली का लिखा गीत, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम सरफरोश।

अभी आपने जतिन ललित का संगीतबद्ध किया सरफरोश फिल्म का गीत सुना। जतिन ललित का ही संगीतबद्ध किया हम आपको एक और गीत सुनवा रहे हैं। इस बार फिल्म है कभी हाँ कभी ना, बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाज कुमार सानू की।

0: चरण पिती चित्तर दा पर्दापन किया। श्री रणबीर गंगवा ने भरोसा दिता कि हरियाणा सरकार किसानां दी भलाई लई वचनबद्ध है, झोना घट्टो घट समर्थ मुल ते खरीदिया जाएगा। नैशनल बोर्ड ऑफ एग्जामीनेशन इन मैडिकल साइंसिस NBEMS ने अज अपने अधिकारित वैबसाइट ते नीट PG 2026 दे नतीजे जारी कर दिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतवार नूं सवेरे 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो ते मासिक प्रोग्राम मन की बात विच देश अते विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करनगे। इसन हुण तक दीआं मुख प्रदेशक खबरां।
1: हम सबका यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना।
0: आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 MHz ते हुण पेश ने पंजाबी गीत ते अज दे गीत अमरिंदर गिल दी आवाज़ च।

0: हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री सोमनाथ नागर का लिखा प्रहसन टपकते सितारे।
1: अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे नारों से डरकर मैं अपने किराया छोड़ दूंगा? कभी नहीं, कभी नहीं।
2: लाला लल्लू लाल की दुनिया।

0: सकते दुनिया मगर किराया कभी नहीं छोड़ सकते समझे।
1: चमकते सितारे चमकते सितारे
2: अरे सुना
1: सितारे
2: सुनो अरे मैं कहूँ सुनो सुनो मेरे इकलौते और चहेते संसरी खेत किराएदारों अरे मेरी फूटी किस्मत के टूटे सितारों कुछ मेरी भी तो सुनो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है कहो।
2: अरे कविवर निर्दयी कुमार पलीत
0: जी
2: अब तक आपने अपनी कविताओं से सैकड़ों ही कवि सम्मेलनों की मट्टी पलीत की है कम से कम मेरी मट्टी पलीत तो मत करो।
0: अब होनी तो कौन टाल सकता है लाला लल्लू लाल जी वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो आपके हम जैसे महान कलाकार विराजे हैं हमारी ही कला के कारण आपको समाज में यश मिल रहा है आपकी पोजीशन बन रही है जी।
2: अरे मेरी 30 साल की बनी मनाई पोजीशन पर तुम चारों कलंकारों ने डिस्टेंपर बो दिया है।
3: लाला लल्लू लाल जी धंधा इस घर में भी तुम्हारी जीत है।
0: अजी क्या हुआ जो मट्टी बनी थे
2: मुझे मालूम है मुझे मालूम है क्यों कत्था चूना जी
3: खबरदार लाला जी धन धन था मेरा नाम कत्था चूना नहीं बल्कि नृत्यकार चंद्र तपन कथकली है समझे चूना कत अगर आइंदा मेरा नाम गलत बोला तो मैं तुम्हारा धन धन धा कर दूंगा।
0: लाला जी आपने कहा इन लोगों की जन्म पत्री देखनी है जो नाम पर झगड़ा शुरू हो गया लेने देने की बात करो लाला जी या फिर मकान खाली करवाओ।
3: होश में बात करना मुंशी जी ये मकान हम मांगने नहीं आए थे आपके पास। क्यों जी पहलवान दलती सिंह मगरमच्छ घाट वाले जी क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
4: आप गलत कह सके बोलो।
2: आप लोग मेरे मकान की नींव 3 साल से हिला रहे हैं और किराया नहीं दिया 3 दिन का भी।
0: ये तो क्या हुआ लाला जी
2: क्या हुआ?
0: तो वैसे भी खाली पड़ा था
2: मेरा खाली मकान ही अच्छा था। आप लोगों के आने से अब ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेतों का अखाड़ा बन गया।
0: हाँ जी शराफत इसी में है कि यहाँ से चलते बनो।
4: खबरदार हमारी शराफत को मत ललकारो हम लोग बाप के धनी है न जाई पर वचन न जाई। एक बार हम जिसको हाथ पकड़ लेते हैं ना कदम
3: आप निकल सकते हैं लाला जी इस मकान से लेकिन हम नहीं निकलेंगे।
5: और फिर ये हमारी जन्मभूमि है हम इसे कैसे छोड़ दें घटना का।
2: ठीक है फिर मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: कहना बहुत आसान है लाला जी अदालत के चक्कर लगा लगा के जवानी में बुढ़ावा जागने लगे जाए।
2: हे भगवान हे भगवान ये सारे ग्रह अपने अपने मकान पगड़ी पे देके क्या मेरी घर में आ गए हैं?
0: लाला जी वो देखिए वो सामने पिछले हफ्ते आपने जो नल में टोटी लगवाई थी वो भी नहीं है।
2: क्या कहा टोटी कहाँ गई?
3: कहाँ गई वो टोटी थी धन धन धा जब मेरी किस्मत फूटी थी जिसमें पानी ना ऊपर से नीचे जाता है और ना ही नीचे से ऊपर आता है। आप उसे कबाड़ी बाजार से लाए थे और मैं उसे वहीं बेच आया।
2: अच्छा, धन धन ठीक है मेरे बर्तन भांडे और बचे हैं उन्हें भी बेचाओ उन्हें भी बेचाओ। मेरे पीतल का लोटा गायब हो गया वो भी तू ले गया था।
0: लाला जी ये तो बड़े खतरनाक है होटलों में लंच करते हैं और डिनर के पैसे बनाता
4: है। सीताराम तभी से बात करो वरना हम इज्जत का दावा कर सकते हैं। See my myself and then talk with me.
2: मुंशी जी अरे ये पहलवान अंग्रेजी भी बोलता है।
3: लाला हम तुम्हारी तरह मुंडी से लेकर हुंडी तक नहीं पड़े हैं
2: तो
3: हम काखा घा से लेकर सारे गामा पादानी तक पड़े हैं। हम लोग हिंदुस्तान के माने हुए कलाकार हैं।
2: मुंशी जी देखना कोई आया है।
0: अभी देखा है तो अरे कमेटी वाले होंगे जी मकान ढाने आए होंगे। अरे लाला जी लड़की आई है
2: लड़की और यहाँ आई है।
6: क्या मैं अंदर आ सकती
3: हूँ?
2: जी आप
6: जी मेरा नाम निम्मी है।
2: निम्मी
6: अभी मुझे कॉलेज में सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट से मिस ग्लैमर का खिताब मिला है।
2: आप खड़ी क्यों है? अब बैठिए ना अब बैठिए ना।
6: कहाँ?
3: अजी हमारे दिल में सर आँखों पर
6: समझ में नहीं आता आप लोग क्या कह रहे हैं।
3: अजी कहने को तो बहुत कुछ है निम्मी जी पर कुछ कह ही नहीं पा रहे। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको सुनिया। हम भटकते हैं तेरे कूचे में बाम पर आए दीद हो जाए। अरे हम भटकते हैं तेरे कूचे में बाम पर आए दीद हो जाए। अरे रुख से पर्दा हटा दे निम्मो गम के मारो की
4: लाला जी आप खड़े खड़े क्या आंखें फाड़ रहे हैं? जल्दी से बाजार जाइए और इनके लिए कुछ रसगुल्ले लाइए।
6: जी नहीं

0: कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए आई थी कि कल हमारे मोहल्ले की धर्मशाला में छोटा सा वैरायटी प्रोग्राम है, उसमें अगर आप लोग एक एक आइटम दे सकें तो।
1: देवी जी वाह वाह वाह वाह, आप 60 करोड़ की आबादी में पहली और आखिरी महिला हैं जिसने हमारी कला को एक जौहरी की नजर से परखा है।
2: रेडियो, मैं कहूँ रेडियो पर जितने भी फिल्मी गाने आते हैं सब यही गाते हैं, और वो विविध भारती में डांस करते हैं।
0: देखिए हम लोग आपकी कुछ सेवा नहीं कर सकेंगे क्योंकि बजट कुछ कम है।
1: आप चिंता ना कीजिए देवी जी, हम लोग पैसे के भूखे नहीं है। देखिए ना, जिसने भी हमें बुलाना होता है वो हमारा नाम पोस्टर में छाप देता है, और सुबह जब हम अपना नाम पढ़ते तो खुद ही वहाँ पहुँच जाते हैं।
0: अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, परसों 6 बजे आप लोग पहुँच जाइएगा। नमस्ते।
3: नमस्ते।
4: देखा लाला जी, खुद ही बातें करते रहे और आपकी जान पहचान तक भी नहीं करवाई इन लोगों ने।
3: मेरी बात सेठ जी,
4: अपना ये मकान औने पौने में बेच के हमारे साथ बम्बई चलो।
2: बम्बई चलो,
4: आप तुम्हारी फिल्म बनवा देंगे, फिल्म प्रेत का दसियों मकान बनवा डालना। कहानी मैंने बहुत अच्छी लगी है, प्रेत की चोरी सारी की सारी कहानी गजल में कही है।
5: फिर तो लाला जी चांदी ही चांदी होगी।
2: आप लोग मुझ पर एक एहसान करेंगे
4: क्या?
2: मैं यूं कहूं मुझे चाराने का जहर लाके खिला।
4: चाराने के जहर से क्या होगा? अरे बिल्कुल लाला जी, या तो खाए घी से या फिर जाए जी से। हाँ। खाओ तो कम से कम 1 रुपए का खाओ।
5: गोकुल की दुकान से मत लइयो, वो जहर में भी मिलावट करे।
2: मैं कहूँ बकवास बंद करो पहलवान जी। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, अगर तुम्हारा बस चले तो मुझे जबरदस्ती नदी में धक्का दे जाओ। कान खोल कर सुन लो सबके सब, या तो मेरा मकान खाली कर दो वरना मैं इसे कल ही बेच दूंगा।
1: बेच दो लाला जी, हम खरीदेंगे।
5: अरे ये दुकान तो पहले ही गिरा हो रहा है, जितने में इसे कोई खरीदेगा उतने रुपए इसकी ईंटें उठाने में लगेंगे। उस दिन कसरत करने के लिए मैंने 2 ईंटे दीवार में से खींची तो पूरी दीवार चारों छाने चित होकर ढह गई।
1: लाला जी, जब भी मैं नृत्य का अभ्यास करता हूँ तो ये मकान मेरी नकल उतारता है, मेरे साथ साथ ये भी हिल हिल कर नृत्य करता है।
2: आप लोग क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हो?
4: लाला जी, हम तो हाथ धोकर ही पीछे पड़े हैं, और तुम जो हमारे पीछे 3 बरस से नहा धो के पीछे पड़े हो उसका कुछ नहीं।
5: हर महीने किराया मांग मांग के तुमने हमारी सेहत खराब कर दी।
1: और हम लोग रेस्पेक्टेड आदमी है लाला जी, कोई इंसल्टेड आदमी नहीं है।
2: फिर मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मेरी छाती पे दलिया डालते हो।
1: लाला जी, सेठ जी, आपका मकान 15,000 में बिक रहा है ना, हम इसे 20,000 में खरीदते हैं।
2: कैसे?
1: कैसे? हम चारों अपने अपने कमरे 5,000 रुपया लेकर पगड़ी पर दे देंगे।
2: पगड़ी पे? और खुद का रहोगे?
5: तुम्हें जो खाली करना पड़ेगा।
2: हे भगवान, मैंने कौन से जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जो इस जन्म में मेरी किस्मत की लॉटरी में चारों फर्स्ट प्राइज खड़े हैं। अरे मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि जैसे ये तो चारों मकानदार हो और मैं किराएदार हूँ।
4: अरे मकानदार आप नहीं रहे, ये व्यापार खंडहर आदि को मुबारक हो लाला जी। जिस दिन अपनी लॉटरी आ गई ना, उस दिन तुम्हें ऐसे से 2 खंडहर खरीद के खराब कर देंगे।
5: जब से मैं इस मकान में आया हूँ मेरा तो रंग भी काला पड़ गया। अरे लाला जी, एक भी सुर ठीक नहीं लगता।
2: और जिस दिन से मैंने तुम्हें अपने मकान में बुलाया उसी दिन से मेरा मुंह काला हो गया।
4: देखो लाला, झगड़ा करना चाहते हो तो वैसे कह दो, नहीं तो हम तो शांति प्रिय आदमी है, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे शांति से फैसला हो जाए।
5: लाला जी, जिंदगी का कड़ा भरोसा, आज मरे कल दूसरा दिन।
2: ठीक है पहलवान,
5: तुम्हारे पीछे कोई नाम लेवा तो हो है? अब देखो ना, भगवान का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, पर औलाद की कमी है। अब हम चारों का गोद ले लीजिए।
4: पहलवान क्या बात कही है। लाला, कभी आपने हमारी तरफ प्यार भरी नजरों से नहीं देखा? जब भी देखा चश्मे से देखा, जिसकी कमानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तोप के नाम पहले ही शहीद हो चुकी है।
5: लाला जी, आप केवल हमें एक बार अपना बेटा कह दीजिए।
4: देखा लाला जी, देखा आपने, ये तो तुम्हें जिंदे को ही रो रहे हैं लाला जी। हम तो इनके पीछे दाड़े मार मार के रोएंगे। अरे हमें एक बार ये मौका तो दे ताकि जमाना हमारे बारे में कह सके, जाने वो कैसे लोग थे जिनको लल्लू लाल का प्यार मिला।
6: लोगों में से निर्विकार चंद्रतपन वो कथक कली कौन है?
1: मैं हूँ।
6: आप हैं? आपसे मिलके बहुत खुशी।

0: था आपके पीछे दो दिन से पड़ा हुआ, मगर आपका कहीं अता पता नहीं मिल रहा।
1: क्या क्या क्या क्या क्या, किसी शादी ब्याह के
0: शादी ब्याह
2: के लिए आए हो?
0: मेरी कोई शादी वादी नहीं है, बात यह है कि आप लोगों ने मेरी दुकान से लॉटरी का टिकट खरीदा था। आपका पहला इनाम 5,25,000 का निकला।
3: अरे अब फिल्म बनेगी भीम प्लासी शुद्ध सारंग आला चौताला प्रोडक्शन की भूत की चोरी।

0: दीवाने पलीत सुनहरे हरफों में छाया होगी।
1: मैं अभी टिकट लेकर आया।
2: माफ करना, अरे मेरी सुनो, अरे माफ करना मेरे बच्चों, माफ करना मेरे बच्चों, मैंने गुस्से में आप लोगों को बुरा भला बहुत कुछ कहा, माफ करना।
0: अरे वो लॉटरी का टिकट, अरे मेरे कुर्ते की जेब में था ना। अरे शाम को आज एक कभी गोष्ठी में जाना है, सुबह वो कुर्ता धोबन को दे दिया कि दोपहर तक मुझे धो के अर्जेंट दे जाए।
3: चलो
0: चलो,
2: अरे धोबना,
4: अरे लो बाबूजी अपना कुर्ता।
2: ए धोबना,
4: दोपहर तक आपने कहा था ना, मैं दो घंटे पहले ही धोला ही।
0: अरे
4: देखो बाबूजी कितना अच्छा कलफ लगा कर लाई,
0: मेरी तो तकदीर में कलफ लगा दिया। टिकट तो देखो ना पहले। अरे ये रहा टिकट इस जेब में,
2: मिल गया।
0: अरे मेरे लॉटरी के टिकट, सारा कलफ तुझे में लग गया। लाला लल्लू लाल की तरह अकड़ा खड़ा है जैसे बारिश में भीगी चार भाई।
1: अरे भाई इसमें तो कुछ भी पढ़ा नहीं जाता, नंबर तनखा है भाई।
5: सर जी, सर जी आपके माथे से तो पसीना टपक रहा है।
2: नहीं मुंशी जी, नहीं मेरी किस्मत के सितारे टूट रहे हैं मुंशी जी, ये पसीने अब कभी बंद नहीं होने के।
5: मेरे पास तो रुमाल भी नहीं। ये लीजिए सर जी, ब्लॉटिंग पेपर से ही पसीना सुखा
6: लीजिए। भूखा वहाँ बड़ा सूखा।
4: क्या हुआ इन लोगों को?
6: अरे तुझे देखकर मिर्गी आ गई है।
7: टपकते सितारे। हवा महल में अभी आपने श्री सोमनाथ नागर का लिखा ये प्रहसन सुना। इसे श्री कुमुद नागर प्रस्तुत कर रहे थे।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शफाक।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
5: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
4: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
6: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
7: पैदा हुआ हूँ।
6: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
9: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स। 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे। 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
10: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए, फरहान अख्तर को फिल्म है रॉक ऑन। जावेद अख्तर के लिखे स्क्रिप्ट की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वर में लकी फिल्म का गीत। अदनान सामी के लिए संगीतबद्ध किए इस गीत को लिखा है समीर ने।

और अब सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम का अंतिम गीत जय वीरू फिल्म से। इसे गाया है मीका सिंह और राजा हसन ने, बोल समीर के हैं, संगीत बप्पी लहरी का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना

0: और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय, जब वो उचित समझे, SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1248 अंक लुढ़ककर 73,500

0: 181 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
2: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
4: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
3: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए जमीन आसमान फिल्म से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: जहरीला इंसान। अब सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: अभी आपने लता मंगेशकर का गाया अनामिका फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे बजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरडी बर्मन।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से आज के फनकार। ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर बाद।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फणी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनि और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया, आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

0: को झूमती,
1: दिल को चूमती,
0: दिल को चूमती,
1: बच न जरा जुल्फ सिया ना किसी को जाए।
2: इश्क जाल में,
3: इश्क जाल में
2: हुस्न चा

0: जालू में।
1: तीसरा कौन, ये फिल्म आई थी 1965 में।
0: प्यार का

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: जो रफी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्म आ गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश की।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने तीन फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने

0: अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं
2: हमारे।
1: हाँ।

इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइश द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका फिल्मी सफर रहा है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जिक्र आज मेरी मोहब्बत का सरेआम होगा, कलियों का तसव्वुर फूलों का नाम होगा, ये चनार के दरख्त, ये मौजें, ये अंगड़ाइयाँ।

जहां नजरें उठाओ बस प्यार ही प्यार है, आज ये जिंदगी चलो तुम्हारे नाम कर दें, ये इकरार मोहब्बत भी सरे आम कर दें।

इल्ज़ाम हम पर ही क्यों देती हो, कुछ जुल्फों कुछ निगाहों कुछ बातों का कसूर होगा, कुछ आपका कुछ हमारा कुछ कुछ दोनों का कसूर होगा। झूठ कहता हूँ तो चमन के नज़ारों से पूछ लो, जो न यकीन हो तो बहारों से पूछ लो।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। नगमा शेर का तरन्नुम तुमने ही छेड़ा है, दिल के तार पर मोहब्बत का साज तुमने ही छेड़ा है। परेशान करते हो क्यों, क्यों बनाते हो बहाने, शिकारे फूलों के चले हैं सुनाने तेरे मेरे ये प्यार के फसाने।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

इंतजार की रात फिर मुख्तसर होगी, चांद निकलेगा, ये नरगिसी निगाहें शाद होंगी। वक्त रुखसत है इस प्यार से देखा न करो, फिर आएंगे वादे पे एतबार करो।

0: फिरते हैं।
1: आज के छाए गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਵਈ ਮੋਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
1: HIV
0: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
4: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
3: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली

0: में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि MDR का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परिनाज धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਤੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राज्य का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गाँव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूँ और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूँ और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने

बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने आपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवा है उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना? जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गई लखनऊ?